हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: नहीं सुरूर ले मिले ओ हुजूर के जिक्र में ही सुरूर है। वो मदीना जो कौन है उनका ताज है। पैरिस को क्या कहते हैं लोग? दुल्हन दुल्हन बेकनों का ठिकाना है। कौन इनका दूल्हा मदीने में?

0: It's 9 a.m. This Tangent is brought to you by
1: Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वर
5: मके ते हमले वारी क्रियल कोशिश माफ करण जोगी ना आहे. हरम जे तहफ़ुज़ लाइ पाकिस्तानी क़ौम सऊदी अरब सां कुलो कुले में मिलाए बीठल आहे. वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जे हुसैन जे हमले ते सख़्त रद अमल. वज़ीर आज़म किड़ ॾियारींदड़ क़दमनि ते अफ़सोस जो इज़हार कंदे चयो आहे त मके ते हमले वारी किरियल कोशिश कंहिं बि सूरत में माफ़ीअ जो असांजो खितो तकरारनि जी ॻरी क़ीमत अदा करे रहियो आहे. धुरियूं सब्र जो मुज़ाहिरो कनि ऐं वधीक शिकताण खां पासो कनि. बचाव वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त मका मुआदो न हुजे त बि मुक़दस हंधनि जी हिफ़ाज़त असांजो फ़र्ज़ आहे. मका दिफ़ाई मुआदो असां ते लागू थिए थो ऐं पंहिंजो फ़र्ज़ अदा कंदासीं. मका मुकरमा ते हमिलो थियो त हुन जी हिफ़ाज़त लाइ मुआदे जी ज़रूरत न आहे. ख़्वाजा आसिफ़ बयान में चयो त हू तफ़सीलनि में नथो वञे. पाण करणो आहे खोलींदो. यमन जे हुसैन मका मुकरमा जे हवाई हदनि में ड्रोन माणे रेड लाइन क्रॉस करे छॾी. सऊदी अरब पारां ड्रोन खे हवा में तबाह करण जी दावा. सऊदी फ़ौजी इतिहाद जो चवणु आहे त यमनी हुसैन जे ड्रोन खे मका जे फिज़ाई हदनि में दाख़िल थियण खां अॻु तबाह कयो वियो. मुक़दस हंधु असांजी रेड लाइन आहे. हुसैन खे इन किरियल हरकत जो सख़्त जवाब ॾिनो वेंदो. हुसैन पारां मके ते ड्रोन हमले वारे इल्ज़ामनि खे रद्द करे छॾियो. सऊदीअ जो F-15 जहाज़ तबाह करण जी दावा. हुसैन अमरीकी ऐं इसराइली जहाज़नि ते हमला न करण जी ख़ातिरी कराए छॾी. परडे॒ही ख़बरू इदारे रॉयटर्स मूजिबि गुज़िरियल हफ़्ते ओमान जे राजधानी मस्कत में हुसैन ऐं अमरीकी इख़्तियारनि विच में ॻुझी मुलाक़ात थी, जंहिंमें हुसैन चयो त अमरीकी ऐं इसराइली बहरी जहाज़नि ते हमले जो को बि इरादो नथा रखनि. पाकिस्तान जो भारतीय सामूंडी जहाज़ जे मुल्की हदनि जी भञकड़ीअ ते सख़्त इतिजाज. भारतीय नज़म उल अमूर जे परडे॒ही आफ़ीस में तलबी परडे॒ही तर्जुमान चयो आहे त पाक बहिरिया 1 सेप्टेम्बर खां पाकिस्तान ख़ासि इतिहादी ज़ोन में सीज़ फ़ायर 26 मश्कूं करे रही आहे. 7 सेप्टेम्बर खां भारतीय मश्कुनि वारे इलाइक़े में दाख़िल थियण जी कोशिश कंदा रहिया. भारतीय सामूंडी जहाज़ पाकिस्तान जे सामूंडी हदनि में चिड़ ॾियारींदड़ ऐं गैर ज़िमेवारियूं हरकतूं कयूं. 15 सेप्टेम्बर ते आराकदिल करे हुननि सां टकराए जी BNS हुननि पारां बचाव जी कोशिशुनि बावजूद भॼी वियो. पाक भरण ऐं वधीक सैयद आसिम

0: आपको पाना,
1: लेकिन हवा आती है उठी है ना, जैसे पानी के ऊपर फैला हाथ रख के कहना मुंह को चला जाए, ये नहीं हो सकता। आपके कहने से कुछ नहीं उठता, समुंदर आपको कुछ नहीं, यानी उनको पुकारना ऐसे जैसे समुंदर को पुकारना है, जैसे समुंदर कुछ नहीं सुनता ऐसे ही वो कुछ नहीं सुनते। जैसे समुंदर बात नहीं मानता कि आपके हाथ पे पानी डाले तो वो भी नहीं करते। वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्द, और अल्लाह के लिए है सजदा कर रही हर वो चीज जो आसमान और जमीन में है। एक हम है कि थके हुए हैं सजदों से, तौअन खुशी से, वकरहन और जबरन। तौअन कौन है? मोमिन। करहन

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: 91.6।
2: इट्स 10 AM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर निया जोशो, अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
5: ब्रॉट टू यू बाय
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी।

पासवर्ड तब्दील करे PNS हुनेन सां टकराइजी वियो। PNS हुनेन पारां बचाव जी कोशिश बावजूद भारतीय जहाज सां रगड़जण जो वाकियो पेश आयो। वाकिए खां पोइ INS कोलकाता रफ़्तार वधाई ऐं इलाइक़े मां भॼी वियो। पाक वेरिया जे पेशावराणे ज़िमेवारनि तर्ज़ अमल सूरतयाल खे वधीक बिगड़जण खां रोकियो।

मका मुआदे में शामिल कें भी मुल्क हमलो थे तो टे मुल्क गड ही फैसलो कंदा। मके मुआदो जारहणो न पर दिफाई नोहित जो है दिफाई वायदन जा ऑपरेशनल तफसील आवाज बुधाया वा DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अरब ISPR है जायतन से भरोसा है दिफा करण से गड सजा देण की भी सग रखू था। अफगानिस्तान बाब वाजे है अफगान सरजमीन पाकिस्तान खिलाफ इस्तेमाल न थे घुरी फौजी ताकत में इजाफे लाए घना वसीला खर्च करे पो पाकिस्तान के दिफाई सलाहतन जो मकसद सिर्फ मुल्की दिफा है। मके ते हमले वारी किरियल कोशिश माफ करण जोगी ना है। हरम जे तहफुज लाए पाकिस्तानी कौम सऊदी अरब सा कुलो कुले में मिलाए बीठल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो हुसैन के हमले ते सख्त रदअमल वजीर आजम से डियारींदड़ कदमन ते अफसोस जो इजहार कंदे चयो आए ते मके ते हमले वारी किरियल कोशिश कें भी सूरत में माफी जोगी ना है। असो खितो तकरारन की गरी कीमत अदा कर रो है। धुरियो सबर जो मुजाहरो कन ए वधिक चिकताण का पासो कन।

बचाव वारे वजीर ख्वाजा आसिफ चयो आहे त मके मुआदो न बि हुजे त मुक़दस हंधनि जी हिफ़ाज़त असांजो फर्ज़ आहे। मके दिफ़ाई मुआदो असां ते लागू थिए थो ऐं पंहिंजो फर्ज़ अदा कंदासीं। मके मुकरम ते हमिलो थींदो त हुन जी हिफ़ाज़त लाइ मुआदे जी ज़रूरत न आहे। ख्वाजा आसिफ बयान में चयो त हू तफ़सीलनि में नथो वञे सघे पर मके मुआदे ते अमल जा पाबंद आहिनि। खिते खे पंहिंजो दिफ़ा पाण करणो आहे त हिते नवां इताद बीठांदा। खेसि नथो लॻे त ईरान रियासत तौर खिते में को नओं मुआदो खोलींदो।

यमन जे होसिन मके मुकरम जे हवाई हदन में ड्रोन उमाणे रेड लाइन क्रॉस करे छॾी। सऊदी पारां ड्रोन खे हवा में ई तबाह करण जी दावा। सऊदी फौजी इतिहाद जो चवण आहे त यमनी होसिन जे ड्रोन खे मके जे फिज़ाई हदन में दाख़िल थियण खां अॻु तबाह कयो वियो। मुक़दस हंध असांजी रेड लाइन आहे। होसिन खे इन हरकत जो इंतिहाई सख़्त जवाब ॾिनो वेंदो। होसिन पारां मके ते ड्रोन हमले वारे इल्ज़ामनि खे रद्द करे छॾियो। सूबे मार्च जे हवाई हदन में सऊदीअ जो F-15 जहाज़ तबाह करण जी बि दावा। हुसैन अमेरिकी ऐं इसराइली जहाज़नि ते हमला न करण जी ख़ातिरी कराए छॾी। परदेह ख़बरू इदारे रॉयटर्स मूजिब गुज़िरियल हफ़्ते ओमान जे राजधानी मस्कत में हुसैन ऐं अमेरिकी इख़्तियारनि विच में ॻुझी मुलाक़ात थी, जंहिं में हुसैन चयो हो त अमेरिका ऐं इसराइली बहरी जहाज़नि ते हमले जो को बि इरादो नथा रखनि।

फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां दिफाई ऐं अहम इंफ्रास्ट्रक्चर जे शोबनि में ख़िदमतूं फराहम कंदड़ अमेरिकी कंपनीअ जे वफ़द जी मुलाकात, बेरियल दिलचस्पी जे मामलनि ऐं दिफ़ाई टेक्नोलॉजी जी तब्दील थींदड़ रुझाननि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। दिफ़ाई सामान जी ख़रीदारी ऐं पैदावार वधाइण जे शोबनि में सहकार जे इम्कान ते बि ॻाल्हियूं। गॾियल दिलचस्पी जे शोबनि में सहकार ऐं राब्तनि खे वधीक हथी ॾियण में दिलचस्पी जो इज़हार। फील्ड मार्शल जो क़ौमी सलामती ऐं मुल्की इस्तेहकाम खे मज़बूत बणाइण में टेक्निकी जिदत जी अहमियत ते ज़ोर भरींदे चयो त जदीद टेक्नोलॉजी ऐं जिदत क़ौमी सलामती तोड़े इस्तेहकाम लाइ अहम आहे।

0: वज़ीर-ए-आज़म फ्यूल सब्सिडी ते अमल लाइ इंतिज़ामिया ऐं पेट्रोल पंप्स जे अमले ते ॿधल सहूलत डेस्क क़ाइम करण जी हिदायत करे छॾी। शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त सहूलत डेस्क ते मौजूद माण्हू फ्यूल
1: सीने की जलन, तेज़ाबियत, बदहज़मी, न्यूकेन, जब जलन हो सीने में न्यूकेन
0: नुमाई फराहम कई वञे। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म खे आगाही ॾिनी वई त आज़ाद

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधंदा रहो उधंदा रहो। अभी बुधो प्या जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।

0: ही आहे सिंध जी दिल
1: इट्स ग्लोब ब्लीच के टेक चिकनेस चमक ऐसी डायमंड स्किन
2: आज जदीद माइक्रोबीट के बनाए स्पोर्ट्स के करे खत्म ऐ कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: हर बार जा नंदड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके तो इन्हीं करे जदे भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाओ जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी
4: अभी ॿुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज़
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर
4: सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी।

0: जिस धरती से जुड़ंदर लाल शहबाज
1: उसी खिते है
0: जीए एफएम सिंध की
2: 11:30 AM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: हेमे डेट तैयार

0: 11:45. This time check.
1: Sharia compliant gold based financing.
2: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन था पर पोलियो मन के रोके भी सके थो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के वजह बकन के उडाम रे
1: ला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: महीने पटे वाले जो 16 साल का पगारू न मिलने खिलाफ बारन से गड एतजाज गोठ फजल आगरो स्कूल के पटे वाले अब्दुल कादिर आगरे 16 साल का ड्यूटी कर रो आया पर एक भी पगार न डनी वही है पगार न मजबूर है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो 91.6
3: धर माशूम वर कोटी वर कोटी कदमुना द यो निवी दुनिया पलोर कदमुना उद्रवले हुमशी द हर मुहिम प महाल यो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वर कवई अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनिवी द्वसास की वर द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत जहतवी गीद खूबुन वालवत वजरी मुमी
4: 91.6 सिंध जवाबा उदरदारा।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
4: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो. इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जा कतरा जरूर प्यारियो. छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उडाम देन था. पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी.
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
3: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
4: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
5: This program is brought to you by
3: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
6: Abhi budhopya GA Hyderabad Matyari FM 91.6 Sindh jo awaaz.
7: O pita ja pitai pita te vasai noor mujho to
6: Sindh jo awaaz budhanda raho.

0: SGS credit card. Spend Story 2026. You.
1: ते मेरे को नौ मुआज खोलिंदो।

यमन जे हुसैन मक्का मुकरमा जे हवाई हंधनि में ड्रोन माणे रेड लाइन क्रॉस करे छॾी। सऊदी अरब पारां ड्रोन खे हवा में तबाह करण जी दावा। सऊदी फौजी इतिहाद चवण आहे त यमनी हुसैन जे ड्रोन खे मक्का जे फिज़ाई हंधनि में दाख़िल थियण खां अॻु ई तबाह कयो वियो। मुक़दस हंधि असांजी रेड लाइन आहे। हुसैन खे इन इहा हरकत जो इंतिहाई सख़्त जवाब। हुसैन पारां मके ते ड्रोन हमले वारे इल्ज़ाम खे रद्द करे 15 जहाज तबाह करण जी बि दावा। हुसैन अमरीकी ऐं इसराइली जहाज़नि ते हमला न करण जी ख़ातिरी कराए छॾी। परडे॒ही ख़बरू इदारे गुज़िरियल हफ़्ते ओमान जे राजधानी मस्कत में हुसैन ऐं अमरीकी इख़्तियारनि विच में गुजरी चयो त हुते हमले जो था रखनि। सैयद आसिम मुनीर ऐं आम इंफ्रास्ट्रक्चर जे शोबनि में ख़िदमतूं फराहम कंदड़ अमरीकी कंपनी जे वफ़द जी मुलाक़ात। गडि॒यल दिलचस्पीअ जे मामलनि ऐं दिफ़ाई टेक सहकार

0: नवाबशाह मरीजन जो चेकअप इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन अवां बे एक दफो आजमाए दिसो चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक बदीन स्टॉप रोड पुरानी सब्जी मंडी एमसीबी बैंक जे सामू नया पुल हैदराबाद वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306244770
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके तो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था इनन जे ख्वाबन के उडाम देन था पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: होम्योपैथिक सलाह मौसर इलाज फराम करे रहा आहिने आगा होम्योपैथिक क्लिनिक सखर पुलिस हेडक्वार्टर चौक पुलिस लाइन सखर टाइमिंग छंछर खां खमीस सुबह 10 बजे का शाम 5 बजे ताई अपॉइंटमेंट मालूमात लाए हियरी राब्तो करियो 03 26 22 0

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीज और जदीद माइक्रो बीज फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

बिल्कुल, आप सुन रहे हैं ZFM 88 नेटवर्क और यहाँ पर हमारे साथ बड़ी प्यारे प्यारे लोग मौजूद हैं, बहुत सारे खूबसूरत लोग हमारे साथ मौजूद हैं। खूबसूरती की दुनिया में आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। और साथ ही साथ आप लोग जनाब प्रोग्राम सुन रहे हैं YTHND स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों के साथ ढेर सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहली जो बात है वो ये कि भैया आप लोगों को आज के प्रोग्राम का टॉपिक बताएं, उसके बाद आप लोगों को बताएं कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा किस तरह से बनने वाले हैं। तो सबसे पहले आज के प्रोग्राम के टॉपिक की जानिब आ जाते हैं। तो आज का जो मेरा सवाल आप लोगों से होने वाला है, यानी कि प्रोग्राम का जो टॉपिक होने वाला है वो एक पहेली होगी, पहेली कह सकते हैं इसको। हाँ जी बिल्कुल। तो आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सा इंसान है जिसे खराब सेहत से फायदा होता है। हाँ जी, वो कौन सा इंसान है जिसे खराब सेहत से फायदा होता है। इसके साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप मुझे पहली मरतबा सुन रहे हैं, रोजाना सुनते हैं, या फिर आप घूमने वाले ले

0: सफ़ा ज़रूरी आहे तव्हां जेके बि माण्हू असां सां गॾु मौजूदु आहे सभु माण्हू डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ कयो की तव्हां बि ख़ूबसूरत थियो तव्हांजी ख़ूबसूरती तव्हांखे मिली वञे ऐं सभु माण्हू तव्हांजी तारीफ़ कनि सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश इस्तेमालु कंदा रहो ऐं ख़ूबसूरती हासिल कंदा रहो अच्छा हिते टाइम थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था जल्दी वापसी हुते तव्हां वटि मोटी अचूं था तव्हां कॾहिं न मुंहिंजे हिते वेठा हुजो मां ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी सो स्टे टू स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए
1: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
3: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by
4: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
5: This program is brought to you by
6: Bank Islam ne laya. Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
7: Dhar mashum warkoti warkoti kadamuna. Dayo nivi dunya palur rawanvi. خو د پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي ځکه چې هم دغه ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي پولیو یعنی مستقله معذوري
8: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद 1.6 सिंध जो आवाज
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है रहा है और हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: दुनिया दा वधन था पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो। छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
3: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

चलिए वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क के। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली।

डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तावन आते बढ़िया होगी में स्किन ब्यूटी क्रीम आपको इस तरह से खूबसूरत तो आप खुद ही कहीं तो कमाल ही हो गया। वो मिस कर रहे थे, हम नहीं लगा रहे थे और आपको लगाना चाहिए मेरे कहने पर, क्योंकि आप जब इस्तेमाल करेंगे ना तो फौरन बाद ही आपको मालूम हो जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन के लिए क्यों जरूरी थी। ओके जी, तो जरा डिटेल मैं आपको समझाने लगी हूँ कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप क्यों इस्तेमाल करेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की सबसे पहली बात तो ये है कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है, और मेडिकेटेड फार्मूला जो होता है ना वो ऐसा फार्मूला होता है जैसे डॉक्टर्स स्किन के जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो मिलकर, से बेहतरीन बात ये होती है कि इसे हर स्किन वाला इंसान इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, नॉर्मल हो, किसी भी टोन की हो तो उसके ऊपर आप। दूसरी बात यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीड्स हैं और माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन है, अल्फा आर्बुटिन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें ऐड की गई है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। नहीं ये तो बढ़िया है, तो ऐसा भी कोई सीन नहीं है, प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, लेकिन ये आपको महंगा नहीं मिलेगा, मुनासिब सी कीमतों में आपको ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाकई एक प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो आपको बताया कि ये 2-in-1 फार्मूला है, तो वो इसलिए 2-in-1 फार्मूला है क्योंकि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी स्किन पर ऐसा है जैसे हवा आती है ना, तो उनके चेहरे पर जो निखार उनको मिलता है बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही खूबसूरत सा, तो वही आपको रिजल्ट जो है ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम देने वाली है क्योंकि ये 2-in-1 फार्मूला है। यानी कि ये आपके लिए एक नाइट क्रीम भी हो गई, आपके लिए फेशियल भी हो गई में भी मिलेगी, और आपका टाइम भी बच जाएगा, आपका वक्त भी बच जाएगा, बस आप रात के टाइम सोने से पहले डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर लीजिएगा, आपको मिलेगी ऐसी खूबसूरती जो कि आप हमेशा से हासिल करना चाहते थे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जनाब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से जो ना अच्छे खासे रिजल्ट देने वाली है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कुल मिलाकर आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए जनाब, क्या ही बात, याद करेंगे मुझे कि सिद्रा वाज क्रीम डसी थी। तो अगर तमाम भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज कयो था या वरी तमाम तैयारी में आता हा बाबा सा इस्तेमाल करना सी, तमाम जल्दी पांजे करीबी जनरल स्टोर से हलिया वनो तो तमाम मालूम वठो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमाम जले अवेलेबल कराए छड़ी आए, अगर फर्ज कयो नथी मिले तो ने चला तांगे प्रोग्राम में नंबर बुधायो विंदु आहे, नंबर ती तमाम रातो करे पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अवेलेबल कराए सगो था। बिल्कुल थी वही चलो जे ही भी बिल्कुल के नपो मिले बाबा सा वट कोनी अवेलेबल, हानी तमाम दुकान ते वेना फेस वॉश भी मार्केबल कराए, तो जनाब ये ऐसा फेस वॉश है जो आपने जिंदगी में पहले कभी यूज नहीं किया होगा, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें ऐड की गई है या तैयार इतना जबरदस्त है, इतना कमाल का है कि लगाने के बाद आप खुद ही कहेंगे आय हाय मजे ही आ गए। अच्छा डी स्किन का फेस वॉश जो है ना ये हाइलोरोनिक एसिड सीरम के साथ तैयार किया गया है, और ये जो हाइलोरोनिक एसिड सीरम होता है ना ये इतना की स्किन के लिए कोई फायदेमंद होता है कि जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन डीपली क्लीन हो जाती है, मॉइस्चराइज हो जाती है और हाइड्रेट भी हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रहे, हमेशा क्लीन क्लीन रहे, हमेशा आपके चेहरे पर ग्लो नजर आना चाहिए, तो डी स्किन का फेस वॉश आप यूज करके देखिएगा। और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना ये आप हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल जी, जैसे आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही डी स्किन का फेस वॉश भी आप हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप मर्द हजरात हैं चाहे आप खवातीन हैं, क्योंकि कई मरतबा ये भी सीन हो जाता है कि लोग कहते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट सिर्फ लड़कियों के लिए है, खवातीन ही लगाएंगे। भाई अब जमाना बड़ा चेंज हो चुका है, अब जैसे भी प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं ना तो उनको इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि उसे मर्द हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खवातीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको मिलने वाले हैं जनाब इतनी शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट, तो जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से मालूमात लीजिए और परचेज कराते जाइए। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर मिलने चाहिए तो आप क्या करेंगे, नंबर को डायल कीजिए, नंबर है जनाब 03-12-50-25-907 बुरी 312 50-25-970 एमयू नंबर आहे 03-27-38-4309 बुरी 332 73-84-309 ही नंबर जो तुम डायल कंदा बई नंबर आए तुम बिन्हीं दी रातों करे सको था, नंबर से रातों करे तुम किथे भी अवेलेबल है, केड़े भी सिटी का तुम जो ताल्लुक है, केड़े भी गोठ का तुम जो ताल्लुक है, हर जगह ते तुम आराम से अवेलेबल कराए सको था। बाबा उनन का मालूमात वठो, कॉल कयो, मैसेज कयो, उनन के दस्यो असा भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाण चाहियो था, डी स्किन ब्यूटी क्रीम किथा असा के मिली सके थी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते रहिए, खूबसूरती का ख्याल रखिए क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं, अच्छा प्रोडक्ट आप डिजर्व करते हैं, तो अच्छा मार्केट में तो उसे जरा पहचानिए, यूज कीजिए और खूबसूरती का ख्याल रखते जाइए। ओके जनाब, तो ये तो बात थी डी स्किन ब्यूटी क्रीम की, और इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि भाई हाँ जी हम प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो

ज्वाइन करिए जनाब 888 पर और ज्यादा से ज्यादा करते रहिएगा। और मेरी आज आप लोग आप मुझे बताइए वो कौन सा इंसान है जिसे खराब सेहत से फायदा होता है। हाँ जी, वो कौन सा इंसान है जिसे खराब सेहत से फायदा होता है। आज आप मुझे इस सवाल का जवाब बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले हैं तो जल्दी से मुझे ज्वाइन कीजिए और बताइए आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है और आप भी इस्तेमाल करने वाले हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है जो कि हमेशा से आप जिस प्रोडक्ट का इंतजार करते थे। तो फायदा उठा। अच्छा, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए।

जी आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाते रहिए, खूबसूरत होते रहिए. मोहम्मद सलमान कहते हैं टॉपिक आंसर. अच्छा, आप तो बात को पता नहीं कहाँ लेकर गए हैं. इतना भी आगे नहीं जाना था. अच्छा चाचा खालिद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बेटा सिडू, हाउ आर यू, हो फाइन, यस आप बताएं कैसे हैं. ओके जी, हमारे साथ ही मेहताब अली इंडियन भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून. हजार भाई कहते हैं सिस्टर टॉपिक समझ नहीं आया, रिपीट अगेन, बता दिया होगा अब. अच्छा गुलाम फरीद पर गुजर जाती है, फिर पता चलता है कि जो गुजर बिल्कुल सुठी गाल कही ईअं थींदो आहे. असां सुठनि ॾींहनि जो इंतज़ार कंदा आहियूं, पर जेके ॾींहं असांजा गुज़री चुका हूंदा आहिनि उहे दरअसल सुठा ॾींहं हूंदा आहिनि. अच्छा फैसल कहते हैं ओके जी कहते हैं हिकु नौजवान बैंक में सिक्योरिटी गार्ड जी नौकरी लाइ वियो, पुछऊंसि अंग्रेज़ी ईंदी अथई, नौजवान चयो हुर कंदड़ इंग्लैंड मां ईंदा छा. पॉइंट तो है. अब्दुल रजाक जजारिया पे सुन रहे हैं, सकरन से आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया जी. साजिद अली कहते हैं समंदर ना हो तो कश्ती किस काम की, मजाक ना हो तो मस्ती किस काम की, ये जिंदगी कुर्बान है दोस्तों के लिए, दोस्त ना हो तो जिंदगी किस काम की. वालेकुम अस्सलाम, कैफ हाल प्रोग्राम, माशाल्लाह माशाल्लाह. सिद्रा मुस्कान ओखी जी आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है. परवा कहती है आप ही अर्ज किया है, इतना अर्ज मत किया करें, मुझे ये बताएं डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रही है नहीं. अच्छा यासीन खान कहते हैं कि मैं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट का शॉप लगा रहा हूँ, जबरदस्त है. हाँ जी शॉप लगाइए लगाइए लगाइए. और इनका अलावा जी हमारे साथ हजार भाई कहते हैं वो इंसान, अच्छा आपने टॉपिक का जवाब दिया है, जबरदस्त हो गया. अच्छा फहीम शेख भाई कहते हैं विसरे सारो लोग, शाला न विसरे तू तो के केडो मु सांडियो आहे साह में. वालेकुम अस्सलाम, मौलाली सलाम बदर अदर छालाइन खुश आयो सफा चाक स्लेट कला मस्जिद अभी असम भी अच्छी वयासी थोड़ी देर करे प्रोग्राम तो लाजवाब आए हमेशा जिया अमा वांगे. अच्छा चलो अच्छी वया देर आए दुरुस्त आए. और आप बताए जी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी मैडम ने यूज करी या फिर नहीं. आप फेस वॉश कब लेने जा रहे हैं. अच्छा ऐसा करिए जो नंबर आपको बता रहे ना उनके ऊपर आप रब्ता कर लिया करें, और नंबर के ऊपर जैसे ही आप रब्ता करेंगे ना तो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करा दिया जाएगा. तो अवेलेबल कराइए, आसानियां कीजिए अपने लिए भी, आसपास के लोगों के लिए भी, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जैसा प्रोडक्ट आपने कभी यूज नहीं किया होगा, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है. तो ट्राई करके देखिएगा, मजे आ जाएंगे. अच्छा यासीन कहते हैं शमन जी गाने जो आसरो करियां, बिल्कुल जी कयो कयो शमन हलाइंदासीं जियो करेस.

बिल्कुल जी बिल्कुल, पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए और मुझे बताइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है, डी स्किन ब्यूटी क्रीम कहाँ कहाँ पर अभी तक अवेलेबल करानी बाकी रहती है, अवेलेबल कराइए। खूबसूरती का ख्याल रखिए मेरी जान, क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं। अच्छा प्रोडक्ट

0: अल्लाह
1: ओके क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना जो कि हमने एंजॉय किया। एक और गाना हमारी लिस्ट में है जो कि होने वाला है हमारे फेवरेट सिंगर की आवाज में, पहचान लीजिएगा। अच्छा फहीम भाई, आपने टॉपिक सुना? हाँ सुन लिया होगा। अच्छा हजार भाई कहते हैं भाई ये तो कमाल हो गया डी स्किन ब्यूटी क्रीम का, वही तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए, खूबसूरती में इजाफा हासिल कीजिए।

Irfan Siyal Saab kehte ki well presentation about D Skin Beauty Cream MRJ. Thank you sir. Jazakallah. Aur Naseem Ghulam Deen kehte hain ki village Ali Bakhsh Jakhro se. Naseem Ghulam Jakhro. Walaikum assalam Sidra bhai, kaisi hain aap? Aapka show aapki tarah suthoa. Sada khilandi kar hazir hazir. Hukum kapitan jo. Thank you pyara bhav. तमाम असा के नूरियाबाद खान ज्वाइन कयो है यो हलवाल नूरियाबाद में टी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले पई।

अच्छा वासा भाई आ चुके हैं मुझे प्यारी भेण कीड़ा हाला इन खुशायो सफा चाक संगी भली सफा मजे मिता पांजा हाल हवाल दियो किथे गुम हुआ हिदायतुल्लाह तमाम भी टॉपिक जो जवाब लेनो आए बढ़िया हो गया जी मीर मोहम्मद बिरोही हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम कहते हैं सदरा मुस्कान नाइस योर शो थैंक यू और नसीम भाई कहते हैं कि सीख ना पाया मैं मीठे झूठ का हुनर कड़वे सच ने कई अपने छीन लिए मुझसे अली ये बहुत बड़ा कमेंट है तो मैं जरा इसको इतना ही रीड करूंगी। चाचा खालिद कहते हैं कि कल जो सवाल पूछा था उसका जवाब बिल्कुल जी बिल्कुल सबने सही जवाब बताया था इसीलिए शायद मुझे लास्ट में जवाब नहीं बताना पड़ा था। और फरवा कहती हैं आपका शो लाइक और शेयर कर दिया है बहुत शुक्रिया स्वीटी।

अभी आप सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए. यासीन कहते हैं कि आपका पुराना डायलॉग आज भी मुझे याद है जब बोलती थी फर्स्ट क्लास और लस्सी दा गिलास. ये आपका डायलॉग मेरा फेवरेट था. अच्छा ओके. नसीम भाई कहते हैं हमारा सॉन्ग आप प्ले करती नहीं है, सात दिन से बोल रहा हूँ. अच्छा आज आपका गाना सुनेंगे, टेंशन ना लीजिएगा, टेंशन ना लीजिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लीजिए.

ओके समाटो गोपांग हमारे प्रोग्राम में मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम. हेलो कहते मैं भी आ गया यूनिवर्सिटी से वापस कंबर सिटी से सुन रहा हूँ. वेरी नाइस वॉइस. टॉपिक आंसर. ओके ओके चलिए आप यहीं पर बैठे रहिएगा, प्रोग्राम सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक जो कि आप हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं. तो टाइम हुआ है जरा हम जाते हैं जी न्यूज ब्रेक की जाने, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है. तो वापस जल्दी आप लोगों के पास आएंगे. आपने कहीं नहीं जाना, यूं जाकर यूं वापस आते हैं. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी हियर, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. यूज कीजिए और खूबसूरत हो जाइए.

0: चिरा ॾियारी दड़ ऐं गैर ज़िमेवारियूं हरकतूं कयूं। 15 सेप्टेम्बर ते INS कोलकाता ख़तरनाक अंदाज़ में रुख तब्दील करे PNS हुननि सां टकराइजी वियो। PNS हुननि पारां बचाव जी कोशिश बावजूद भारती जहाज सां रगड़जण जो वाक़ियो पेश आयो। वाक़े खां पोइ INS कोलकाता रफ़्तार वधाए ऐं इलाइक़े मां भॼी वियो। पाक बहिरा जे पेशवारनि ऐं ज़िमेवारनि तर्ज़ अमल सूरताल खे वधीक बिगड़जण खां रोकियो। मका मुआदे में शामिल कंहिं मुल्क ते हमिलो थियो त टई मुल्क गॾियल फ़ैसिलो कंदा। मका मुआदो जाराणो न पर मुआद दिफ़ाई नोयत जो आहे। दिफ़ा वारे वाइदनि जा ऑपरेशनल तफ़सील अवामी सतह ते न आहिनि ॿुधाया वेंदा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरीअ जो अरब टीवीअ खे इंटरव्यू। DGISPR चयो आहे त कंहिं बि मुल्क ख़िलाफ़ असांजा इरादा जाना न आहिनि। दिफ़ाई सलाहियतुनि ते भरोसो आहे। दिफ़ा करण सां गॾु सज़ा ॾियण जी बि सघ रखूं था। अफ़ग़ानिस्तान बाबति बि मौक़ो वाज़े आहे। अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान ख़िलाफ़ इस्तेमाल न थियणु घुर्जे। भारत पंहिंजी फ़ौज ताक़त में इज़ाफ़े लाइ घणा वसीला ख़र्च करे पियो। पाकिस्तान जे दिफ़ाई सलाहियतुनि जो मक़सदु सिर्फ़ मुल्की दिफ़ा आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अहां जो गाॾी ख़रीद करण जो इरादो आहे
3: या पंहिंजी पुराणी गाॾी विकिणण चाहियो था त पोइ अचो बालाज मोटर्स मोरो ते,
2: जिते तव्हां खे मिलनि थियूं टोयोटा, सुज़ुकी, होंडा,
3: किया, स्पोर्टेज ऐं ॿियनि कंपनियुनि जूं मुख़्तलिफ़ गाॾियूं, जिन में जापानी इम्पोर्टेड ऐं हाइब्रिड गाॾियूं पिण शामिल आहिनि।
2: तव्हांजी पसंदि, ज़रूरत ऐं बजट मुताबिक गाॾी जी चूंड में बहितरीन सहकार।
3: बालाज मोटर्स मोरो ते हर क़िस्म जी गाॾियुनि जी ख़रीद ऐं विकिरो जी सहूलियत मौजूद आहे। मुनासिब अघनि ऐं बहितरीन डील।
2: तव्हां पूरे पाकिस्तान में अवां जिते बि हुजो पंहिंजी गाॾी बुक कराए सघो था।
3: बालाज मोटर्स नज़्द गार्डन सिटी, दादू रोड, मोरो। प्रोप्राइटर अली बख्श खासकेली। अॼु ई राबितो करियो 03002963322।
4: हर माशूم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوي دنیا په لور روان وي. خو د پولیو رز دا قدمونه درولې هم شي. نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي 2 ساسکي ورکول مه هیروي، ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله مازوري.
5: साईं कुछ खबर अथव?
6: छा थियो सोणी?
5: ॿिनि ॾींहनि खां सोलर वारी बैटरी ख़राब थी पई आहे। नई बैटरी कॾहिं आणींदा?
6: सोणी, हिन महांगाई जे दौर में नई बैटरी जी ज़रूरत ई कोन्हे। पंहिंजी पुराणी बैटरी सरगोदा बैटरी सर्विस वारनि ॾांहुं अॼु ई खणी पियो वञा। उहे अधु क़ीमत में पुराणी बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे सफ़ा नओं करे छॾींदा।
5: साईं, पोइ इहा बैटरी जल्दी त ख़राब कोन थींदी?
6: न न सोणी, सरगोदा बैटरी सर्विस वारा 6 महीना गारंटी पिया ॾियनि बैटरीअ जी।
5: वाह वाह, पोइ साईं जल्दी करियो, हाणे वञो ऐं बैटरी ठाराए अचो।
6: सरगोदा बैटरी सर्विस तां पंहिंजे UPS ट्रैक्टर ऐं सोलर वग़ैरह जी ख़राब बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे नओं बणायो।
7: ऐं हा, हाणे कंहिं बि कंपनीअ जी सब वारी बैटरीअ में सभु नवां सेल लॻायो सिर्फ़ 3500 रुपियनि में 6 महीननि जी गारंटीअ सां ऐं ॿियनि सभिनी बैटरियुनि जा सेल पिण मुनासिब क़ीमत में लॻाया वञनि था। हीअ ऑफर महदूद मुदत लाइ आहे, त पोइ देर छा जी? अॼु ई अचो, पंहिंजी पुराणी बैटरीअ खे नओं बणायो।
6: मिलंदड़ जुलंदड़ कम खां धोखो न खाईंदा, सुठे मयारी कम जे लाइ अॼु ई तशरीफ़ आणींदा। सरगोदा बैटरी सर्विस, म्युनिसिपल स्टेडियम नज़्द नजम मेडिकल स्टोर वारी घिटी, पुराणो बस स्टैंड, लाड़काणो। राबते जे लाइ मोहम्मद फारूक, मोबाइल नंबर 03156829924।
7: खु़शख़बरी, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर रेशम गली लाड़काणे में दाऊद एस्थेटिक क्लिनिक जो इफ़्तिताह थी चुको आहे। डॉक्टर इरम जूणे जो MBBS, RMP, D-Drum, E-Drum, UK कंसल्टेंट कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ डर्माटोलॉजी, चांडका मेडिकल कॉलेज ऐं अस्पताल लाड़काणो। हिते चमड़ीअ जी बीमारियुनि जहिड़ो की ख़ारिश, मल्लो, पुराणो फटो, बग, ॾढ, मोहिड़ा, वार चरियो, चेहरे जा दाग, चेहरे ते गैर ज़रूरी फुड़नि जो इलाज, गंजपन जो इलाज PRP ज़रिए, हाइड्राफे फेशियल जो इलाज मशीनन सां ऐं औरतुनि जे चेहरे ते गैर ज़रूरी वारनि जो इलाज लेज़र थेरेपी सां कयो वञे थो। डॉक्टर इरम जूणे जो चमड़ी के बीमारियों की माहिर। एड्रेस दाऊद एस्थेटिक क्लिनिक, अली शॉपिंग सेंटर, रेशम गली, लाड़काणो। टाइम रोजाना 2 बजे का शाम जो 5 बजे ताई, आचर ते शाम जो 4 बजे का रात जो 8 बजे ताई मुफ्त चकास कई वेंदी आहे। याद रखंदा, इंडस मेडिकल सेंटर, लेडीज जेल रोड, लाड़काणे ते रोजाना शाम जो 5 बजे का रात जो 8 बजे ताई, आचर ते सुबुह जो 10 बजे का मंझंदि जो 2 बजे ताई, जुमे ते 1 बजे का 3 बजे ताई मुफ्त चकास कई वेंदी आहे। राबते ऐं मालूमात जे लाइ 0333-6541-355।
3: हर चेहरो पंहिंजी अलॻि सुञाणप रखे थो, ऐं हर सुञाणप खे घुर्जे ख़ासि ख़्याल। एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम कंबाइंड वाइटनिंग फार्मूला डे एंड नाइट क्रीम सां गॾु अव्हां जी रोज़ानी स्किन केयर रुटीन जो हिसो। नरमी जो अहसास, ताज़गी जो एतमाद, ऐं केयर जेका हर ॾींहुं अव्हां सां गॾु हुजे। एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम, खूबसूरतीअ जो एतमाद हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम सां गॾु एक्सपोर्ट ब्यूटी सोप ज़रूर इस्तेमाल कंदा। शहर जे हर मेडिकल स्टोर ऐं जनरल स्टोर ते दस्तियाब आहे। हेल्पलाइन नंबर 0314-1705-558।
8: अनीसा, खैर तो आहे? मंडकाए तो घुमे, धक लगो तई छा?
9: हाओ यार अब्दुल्ला, एक्सीडेंट में जंघ जो हडो भजी पियो आ। तोखे त खबर आ, गरीबी हाल आ, पैसा भी कोन्हन के। सोचा तो ऑपरेशन किथां करायां।
8: भाऊ परेशान न थी, लाड़काणे में डॉक्टर प्रदीप कुमार लालवाणी सूफी सतारी वेलफेयर ट्रस्ट तरफा ऑपरेशन मुफ्त करे तो, इलाज भी अड़ो सुठो तो करे जो ठीक भी जल्दी थी वेंदे। गरीब तो
10: हक आवाज, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा।

और जनाब लारकाना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। ओके जनाब, सर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ जरा बातें हो रही हैं, और जरा जो बातें हो रही है ना वो आप लोगों के फायदे के लिए ही हो रही हैं, क्योंकि अगर आप अपनी खूबसूरती का ख्याल नहीं रखेंगे, आपको पता नहीं होना चाहिए कि भाई जो जो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो कितनी ज्यादा खतरनाक होती है, आपके चेहरे के लिए कितनी ज्यादा हार्मफुल होती है। लेकिन अगर एक ऐसा प्रोडक्ट आपके लिए अवेलेबल है मार्केट में जो कि भाई मेडिकेटेड फार्मूला है, आपकी स्किन से रिलेटेड जितने डॉक्टर्स होते हैं ना उन डॉक्टर्स ने मिलकर ये फार्मूला तैयार किया है आपकी खूबसूरती का ख्याल रखने के लिए, आपके चेहरे पर एक अच्छा सा प्रोडक्ट होना चाहिए इसके लिए और आपकी स्किन को हमेशा के लिए महफूज रखने के लिए, तो भाई आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आपको अपनी स्किन प्यारी नहीं है? ये जो तरह तरह के प्रोडक्ट्स लगाते हैं ना उनको बाय बाय बोलिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते रहिए। अच्छा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के का फेस वॉश भी मिल रहा है, तो अगर आप क्रीमों से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, वैसे लगानी तो चाहिए, कोई इश्यू नहीं है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं लगा सकते हैं, कोई मसला है, कोई इश्यू है, तो आप डी स्किन का फेस वॉश ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल जी, तो डी स्किन की अगर फेस वॉश की यहाँ पर बात करते हैं तो डी स्किन का फेस वॉश जो है ना ये इतना जबरदस्त क्वालिटी का प्रोडक्ट है कि पर्सनली अगर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं तो भाई मुझे ये प्रोडक्ट बड़े, आप भी लगाइएगा, जितने जितने मेरे अराउंड जितने भी लोगों ने यूज करे हैं ना उन सब लोगों ने बड़ा अच्छा सा मुझे फीडबैक दिया है और इनका बड़ा पॉजिटिव सा रिस्पॉन्स मुझे मिला है, तभी जाकर मैं इस चीज पर पहुंची कर भाई डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स कितने कमाल के। जो फेस वॉश है ना ये आप यूज कर सकते हैं हर स्किन के ऊपर, और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना ये भाई इसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम ऐड किया गया है जो कि आपकी स्किन को डीपली क्लीन करने के लिए है, रखने के लिए है। ओके जनाब, सो अगर आप भी अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहते हैं या फिर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे एरिया में ये प्रोडक्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये भी बड़ी दिक्कत हो जाती है कि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर नहीं मिल रहे प्रोडक्ट, जब परचेज करने जाते हैं आपको दुकानदार कहता है कि भाई ये तो प्रोडक्ट नहीं है लेकिन ये ले जाएं, फलां प्रोडक्ट ले जाएं, इसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर ऐसा कोई चूना आपको भी लगाए तो आप ऐसा कीजिएगा, उन्हें बोलिए फुल स्टॉप लगाओ, थांबा थांबा भाई साहब, आप बस डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल कराइए, और जब वो अवेलेबल कराएंगे आप बोलिए हम जब अवेलेबल करा लेंगे ना तब आकर आपसे परचेज कर जाएंगे, तो जल्दी जल्दी से अवेलेबल कराइए और जो आपको प्रोग्राम में नंबर्स बताए जाते हैं ना उनके ऊपर राबता करती रहिए। ओके जी, तो नंबर्स क्या हैं जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बताते चलें, तो नंबर है जनाब 03-1250-25907-312 50-75-970 आई यू नंबर आहे 03-27-38-43-09-3283-79। तो ये नंबर आप जल्दी से डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल कराइए, और फिर उसके बाद जाकर परचेज कीजिए, क्योंकि जब आप परचेज करेंगे इस्तेमाल करेंगे तभी तो पता चलेगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश कितना ज्यादा जरूरी है। तो इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरती को जरा पहचानिए और आपकी खूबसूरती क्या चाहती है आपसे, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी जिंदगी बदल देगा, इतने परफेक्ट प्रोडक्ट है ये, ट्राई करेंगे तो अंदाजा लग ही जाएगा। यहाँ पर शमन का गाना लगाया है और यासीन खान को डेडिकेट जाएगा ये गाना, उनको भी जिन्होंने शमन के गाने की फरमाइश कर दी थी, और मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बताएं वो कौन सा इंसान जिसे खराब सेहत से फायदा मिलता है।

तो ठीक है, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई नहीं, ये तो बताइए। ओके, मैसेजेस की जानिब जो की हुए, यहाँ पर सबसे पहला जो मैसेज मिला है वो इस्माइल थरपारकर से है। दीदी अस्सलाम वालेकुम, सिद्रा मैडम क्या हाल है आपके? शो बहुत अच्छा है, थैंक यू। मैसेज क्या या मैसेज आपका मिसिंग पार्ट हो चुका है, जरा बता। इस्माइल आपको बलोच मिर्पले शाम का एक आते हैं जी। शहजाद अली राजपर हमारे साथ है फ्रॉम बसीरो, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदी सिद्रा, वेलकम टू शो। अदा तुम मोहबतू आए, तुम प्रोग्राम में चौथा भली करे आया।

0: ओके जी ओके, कोशिश करूंगी सबकी ही फरमाइशें तकरीबन प्रोग्राम में चले, लेकिन आप भी कोशिश कीजिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करें। और स्मार्टू आपने भी फरमाइश कर दी, मैं कोशिश करती हूँ। अनवर भाई कहते हैं कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। कुछ तो हुआ है सर्द मौसम का, आपका मैसेज ऊपर चला गया।
1: सोचे भी न थो सघा अचानक कदम ही रोके भी न थो सघा।
0: अच्छा हिदायतुल्लाह क्या बात है जी, आपको हमारी प्लेलिस्ट पसंद आती है, बहुत बढ़िया। वासिफ भाई कहते बियो बुधायो अधिक खुश लगा पाया आयो, तबियत सेहत सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, तां पांचो बुधायो। अच्छा। और आर एन ए आर हमारे साथ है विलेज हाजी खेर मोहम्मद खोखर इमाम बख्श खोखर अंसर तमा दिनो आहे सही आई जी मोहब्बत तां जो प्रोग्राम बुधो पया। हां जी अच्छा अली मोहम्मद भाई भी हमारा बहुत शुक्रिया उसके लिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी यूज कीजिएगा, आपको वो भी बड़ी अच्छी लगेगी। नसर मोहम्मद भट्टी हमें सुन रहे हैं, नसर मोहम्मद भट्टी भाई कहते हैं आज आतिफ असलम का गाना तो चलाएं, हाजिर टाइम बची हूँ तो बिल्कुल अलाइंदा सी। और फहीम भा कहते हैं कि दादा मुझको फेस वॉश क्लिफ्टन में नहीं मिल रहा है, और आपको कैसे पता चला? भाई कल आप ही ने तो बताया था मुझे, कैसे वरना पता चलना था, आप ही बता गए, भूल जाते हैं अपनी बातें, ना करें भाई ना करें। बिल्कुल जी मैडम से जरा फीडबैक लीजिएगा, वैसे

प्रियो गणेश अली मोहम्मद बिरोही भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मदीज जी से आप हमारा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम कहते हैं शो नाई से, बहुत बढ़िया। और जी हमारे साथ हैं हजार भाई, थैंक यू थैंक यू। सिंपल रोमियो हमें सुन रहे हैं, हेलो। अच्छा नसीम गुलामदीन भाई कहते हैं कि जी मिले थी नूरिया बाद में डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असा तो पूरी गोठ के डी स्किन ब्यूटी क्रीम वी डी है आई ली जाए बुधा जो। अच्छा प्रिंस ममताज मालिक आते कहते नूरियाबाद से जुड़े और हजार हमारे वर्क खंड के मैंने एग्जैक्ट पूरी डेट के साथ आपको सब पता है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, आपको सब चीजें याद है माशाल्लाह। आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी आप परचेज कीजिए। और फहीम भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ये भी ठीक है जी। और अमीर बख्श भाई हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। और दिया परी हमारे प्रोग्राम में कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर सदरा मुस्कान, हाउ आर यू, और प्लीज प्ले निगत नाज एनी सॉन्ग डेडिकेट हिरा रिमशा एंड डेविल डेविल। ओ यानी कि ये बदला पूरा हो गया, उन्होंने आपको चुड़ैल बोला, आपने डेविल बोल दिया, हिसाब बराबर। चले निगर जो गानो बुधू था हिरा के रिमशा के डेडी की था थोड़ो थोड़ो मुखी भी कयोस। तो निगत मुखी भी वणंदी है।

क्रीम लॻाइण खां पोइ पकी पकी ॻाल्हि आहे, तव्हां बाह लोड़ी घुमंदा, छो त हुसन ई तव्हांजे कॾहिं कॾहिं हूंदो, माण्हू तव्हांखां पुछंदा, ॾिसो त हाल अहिवाल त ॾियो, एॾी ख़ूबसूरती काॾां थी अथव, मूंखे ॿुधायो बाबा, ही टी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कमाल आहे, ऐं तव्हां बि टी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाइजो, तव्हां बि सुहिणा सुहिणा थी वञो, पोइ तव्हां बि बाह लोड़ी घुमो। अच्छा मुगल उमरानी हमारे सादे भाई को वेलकम हो गया जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा फैसल अहमदानी आपको भी बहुत शुक्रिया वेलकम। प्रिंस ममताज आप डी स्किन का फेस वॉश ट्राई करके देखिएगा, साबुन तड़ा आयो ना, फेस वॉश तड़ा आयो ना, या फिर मुंह भी कोन धोईंदा आयो, मुंह धो तो डी स्किन जो फेस वॉश लाजमी ट्राई कजो, सही है। और दिया कहती है कि दिया कहती है कि पड़ा ही वास्ता हुसन के दुश्मनों से, अब खरीद के भी नहीं देते जालिम डी स्किन ब्यूटी क्रीम। ओ तेरी ये तो गड़बड़ी हो गई, अब तेरा क्या होगा कालिया।

स्टोर जाइए। वैसे गर्मी क्यों अभी कराची में ज्यादा है? अब तो खत्म होना चाहिए गर्मी को, क्योंकि इधर तो मौसम ठीक ठाक हो गया है, तो उधर भी ठीक होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी।

भाई वो मोलाई का बड़ा पुराना गाना है, सो अच्छा है सुनकर, मतलब मजा आता है, ऐसे बच्चों वाली शायरी लगती है अच्छा लगता है। अच्छा वफा शहजादो मक्सी में सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई। नज़र मोहम्मद भट्टी भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है। ऐसा कोशिश क्या तव सभी भाजू फरमाइशों हल वासी पर प्रोग्राम एतड़ो नंढड़ो है वही तुम सब भाई फरमाइशों कन्दा आयो किथे मां पूरी पी सकान थी तो बस तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज कर डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल अना तक कोई है तो अवेलेबल करायो बबा अवेलेबल कराने का फौरन बाद वो भजंदा वी अचो डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन फेस वॉश यूज कर सोना थिया कोन। अच्छा तां इते वेओ हाणे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो टाइम थियो आहे, मां जल्दी मोटी तव्हां ॾे चवंदी तव्हां काॾे न वञो इते वेठा हुजो ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी। सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और हसीन हो जाइए।

0: It's 2:30.
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर
1: बुधंदा रहो
0: इट्स 2:30 PM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम
4: दिस प्रोग्राम
5: पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग
3: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है सिर्फ 2 मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन 2 मुमालिक में शामिल है अब जिम्मेदारी हम सब की है हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी
6: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन दीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को हर दिन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो

ओके जी, दिल दर्शन कान चरिया नाडो वीआईपी गानों असा एंजॉय क्यों पिया। बिल्कुल जी, प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ही चाहते हैं भाई हमारी खूबसूरती हमें मिल नहीं रही है, बहुत ज्यादा टोटके ट्राई किए हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगा के देखे लेकिन फर्क कोई भी नहीं है, तो भाई आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करके देखिए। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जितनी भी मैं बातें बताती हूँ ना, वो सारी बातें बिल्कुल सच्ची, अगर आप परचेज करेंगे इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाता है कि भाई सिदरा बाजी जेको बुधायो सब सही बुधायो है। तो तमाम भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करी हुई, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तुम्हारे करीबी जनरल स्टोर से अगर अना तीन अवेलेबल कोने थी आए तो सब का पेड़ी तो पांच करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो, उन्होंने तुम इस्तेमाल करो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम को जब आप यूज करेंगे ना, तो ये चीज तो आप जहन में रख लें कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी ऑल स्किन टाइप के लिए है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फार्मूलेशन है, अल्फार्बोटीन है, कोचिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें एड की गई है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। तब जाकर आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट बना है जो कि आपकी खूबसूरती में इजाफा लाएगा, आपकी खूबसूरती का ख्याल रखेगा और आपको हमेशा के लिए प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर गोरा गोरा बना देगा। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को चाहे आप मर्द हज़रात हैं, चाहे आप ख्वातीन हैं, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए जनाब ये चीज भी आप लोगों को बताते चलो कि ये जो वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स ना, तो पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट के बारे में, अगर आप पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 से 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन एड की गई है, यानी कि इसका मतलब ये बनता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है इतना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी तो भाई मतलब मजे ही हो जाएंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए, और ये इतना पॉपुलर प्रोडक्ट है कि पाकिस्तान में तो मिल ही मिल सकता है लेकिन आपको ये बाहर के ममालकात में भी मिल रहा है। तो बहुत ही शानदार क्वालिटी का प्रोडक्ट है डी स्किन ब्यूटी क्रीम।

हासिल करना चाहते हैं और इसी के साथ साथ जो भी नंबर आपको बता रही हूँ प्रोग्राम के अंदर उनके ऊपर राता रखा करें ताकि आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते जाएं और हमारी पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते जाइए। ओके सो प्रोग्राम की लास्ट लिंक में हम आ चुके हैं। वक्त बड़ा तेजी से गुजरता जा रहा है, मुकाबला बढ़ा सकते हैं। तो जरा आपके मैसेजेस की जानब भी आ जाती

कसम न दे कसम न दे। अच्छा ये हमारे साथ जी मौजूद हैं मीरपुर खास अब्दुल्ला भाई, आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करें, क्या बात है, बढ़िया यूज करते रहिए। महबूब अली हमें सुन रहे हैं मोरो सिटी से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिद्रा मुस्कान। वालेकुम अस्सलाम जी। अली हमारे साथ है मोरो से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली। और हमारे साथ है गोट हाची गुलाम खास के लिए, लग झंडो मरीक के लिए अदा तो बुधू पया। वाह साई वाह, जबलन में भी असांजा माण्हू शो बुधन पया। जियो करे जियो करे, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जबलन में भी अवेलेबल कराए सको था। जेके नंबर तांके बुधाया पई, बस वे डायल कजो, कॉल या फिर मैसेज कर अदे के चेजो अदा करन ता डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाला माण्हू भी लगन बाबा उन डो कयो जा। आई ता सब डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल अवेलेबल करायो, मैं सोना सोना थी वणो। अच्छा ये हमारे साथ है सज्जन माशी एंड शफीक साबकी गोठ जान मोहम्मद माशी मोरो खान तवा सके जॉइन कयो है। सुबह जो मबदुआन प्रोग्राम बुधु पया, अली रसा में सुन रहे हैं मोरो से, कहते हैं कैसी हो सिद्रा मुस्कान, आपका शो नाइस है। थैंक यू वेरी मच, मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छी, आप बताएं कैसे हैं। और मोरो वाले लोगों का क्या कहना भाई, इतने एक साथ ही मैसेज कर दिए मोरो के लोगों ने। अब ये तो बताएं, मोरो में डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है नहीं, क्योंकि मोरो में मुझे लग रहा है कि मिल रही है, तो आप जरा जाइएगा और परचेज करके आइएगा, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा ये गाना आतिफ असलम की आवाज में है, तो जिन्होंने बोला कि आतिफ का गाना सुनाएं उनको डेडिकेट जाता है।

जी क्या बात है। और यहाँ पर वासु भाई में सुन रहे प्रोग्राम भल्ला हल्दा पयदी, थैंक यू वेरी मच भाजू मोबितुआ है। और यासीन कहती है आपका शो पूरी दुनिया में छा गया है, जय बुधा कसम दिया तो खबर ही गुनो ऐसा पहली लिंक वाला कॉमेंट तमु पहली लिंक में ही खत्म करे चढ़िया हुआ। हाँ बी लिंक वारन में थोड़ी देर थी वही होंगी। अच्छा मुजाहिद मलिक हमारे साथ कहते हाय सिडो गोटकी में मिल रही है डी स्किन ब्यूटी क्रीम, मैं यूज कर रहा हूँ, चमकाए छो ती मारे छे वाला अड़ा अड़ा फीडबैक दींदा कर बुधाइंदा कर डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइंदा खबर पर बाबा ये जगह सोना ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएं ओके जी हिदायत ला कहते बिल्कुल सिदरा मत करे अच्छा फहीम भाई जो बाह लोड़ी घुम मुख्य खबर ना अला उनके चवंदा आई एम मासूम मू ना उन राई देश का सिपाही हिदायतुल्ला वो बस डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करें। दर्दे दिल कहती वाई क्या हो गया आपको। और जी हमारे साथ हैं हजार प्रोग्राम शुक्रिया। और चाचा के बारे में फहीम कहते हैं कि सर दिन रात एसी में होते हैं फिर भी सर को गर्मी हो रही है कराची में, वही मैं सोच रही थी वड्डे लोग थे वड्डिया गला ये तो आपने सुना ही होगा। जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं बताइए। और यहाँ पर वफा शहजाद और मक्सी हमारे साथ है कहते हैं प्रोग्राम पसंद आए थैंक यू डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बताइंदा कयो। और राशिद नहीं रशीद खोसो है कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रशीद भाई आप हमें हैदराबाद से सुन रहे हैं थैंक यू जी थैंक यू। अच्छा फरवा कहती है हर दिल जो प्यार करेगा अच्छा वफा मीर खान मुगेरी भाई हमारे साथ है कहते तोसा मजूरियो सोना साई उमी लगा सी भामा कोशिश कयां थी तुम बुध प्रोग्राम बुध पे।

एसटी कर एतिरा न मोकिलींदा कयो, ग्रोसरी सॼी भरे छॾी अथव। अच्छा वरी वफ़ा अब्दुल वहीद जतोई भी अची विया आहिनि जी स्टीकर खणी करे। हेॾा सारा स्टीकर तव्हां खणी आया छो बाबा? ख़ैर त आहे, डीसी खुली अथव छा?

भाई करीब ही छापा सकूं। इंजॉय किया हमने। होने वाला है ये बस मेरी चॉइस पर गाना चलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल करते रहिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आके खूबसूरती में चार चांद लगाने वाला प्रोडक्ट है, तो ट्राई करके देखिए, मजे ना आए तो करिएगा जरा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बता दिया करें, ताकि हमारे सुनने वालों को पता चले कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाकई कितनी अच्छी प्रोडक्ट है। और साथ ही साथ

जी बिल्कुल, दुख की क्यों याद है। और जरा कुछ हमारे पास मौजूद है, हम जरा अर्ज करेंगे, आप सुनिएगा। वो कहते हैं ना कि अगर मैं खुद से ही थक जाऊं तो कहां जाऊं, अगर मैं खुद से ही थक जाऊं, जब मेरा अपना वजूद ही कुछ बन जाए तो बताओ जरा मैं कहां जाऊं। पता है सबसे दूर किसी ऐसी जगह चली जाऊं जहां मेरी खामोशी को भी कोई सुन ना पाए और कोई सवाल भी ना कर सके। मगर इंसान दुनिया से तो भाग सकता है, अपने अंदर के शोर से नहीं भाग सकता। मैंने बहुत लोगों में सुकून ढूंढा मगर हर बार खुद को पहले से ज्यादा तन्हा पाया। काश कोई ऐसा शख्स मिले जो मेरी खामोशी पढ़ ले और मुझे कुछ कहे बगैर समझ ले। अब ना किसी से शिकवा करने को दिल चाहता है, ना अपनी कैफियत बयां करने को अल्फाज मिलते हैं। बस कभी कभी दिल चाहता है कि कोई पास बैठे और कहे, तुम्हें सब अकेला क्यों छोड़ जाते हैं और तुम्हें सब अकेला ही क्यों सहना पड़ जाता है। शायद बात इंसान को रास्ते एक मुखलिस से है। और अगर वो इंसान अंदर भी ना ढूंढ

अल हम सेहतियाब थी चुका आहिन अवां बे मेडिकल आहे डी हैं जो 10 वगे खां शाम सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक बदीन स्टॉप रोड 03064

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उडाम देन था। पोलियो मतलब मजूरी।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: मीर रजा केसी जांच लाए कायम अदालती कमिश्नर संदस वेजो दोस्त अहमद बयान दौरान मीर रजा जो वालिद रोई पयो कमीशन पारा मीर रजा के वारसन से अकेलाई में मुलाकात की तजवीज वकीलन के मुलाकात में शामिल थे रोके छो अहमद के वकील मीडिया से गालंदे है तो मीर रजा अहमद पान में घाटा दोस्त आ मीर रजा के वालिद अहमद लाय हो तो उन मीर रजा है अहमद अज सुभा मीर रजा के खानदान से मुलाकात क्राइम सीन न होजन ते सवाल नर्सरी के अमले का कयल पुछा गाछा नाकाफी करार सिक्योरिटी गार्ड के हथियार बाबत भी पुछा गाछा। सिक्योरिटी फोर्सेज जो बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाक में ऑपरेशन टे दहशतगर्द मार सिक्योरिटी जरिये मौजूद फोर्स के जिले आवरान में कार्रवाई दौरान टे दहशतगर्द जहनम भेड़ा क्या वह ऑपरेशन दौरान दहशतगर्द के कब्जे में वे अंग में हथियार हथ क्या वह कराची के सरजानी टाउन में औरत संदस टिन बार कत्ल संदन वेझो अजीज निकतो पुलिस खेस गिरफ्तार करे वरतो डीआईजी ओला इरफान बलोच प्रेस कॉन्फ्रेंस कन्दे चवा गिरफ्तार जवाबदार मोहम्मद हुमायूं नारी मेवे सा ज्यादा की कोशिश कई मजामत करण ते खेस कतल कयो अरह महीने की बाड़ी रुनीत खेस जित सा टकरू हणी कतल कयो ब बार ट्यूशन ता मोटिया तो उन्हें भी कतल कर बाद जवाब

घर के साफ कयो, सरियो भी धोतो, जंहिं बाद फरार थियो। चौकीदार जे घर वारी जवाबदार हुमायूं खे मेविश जे घर वेंदे ॾिठो। जवाबदार ॿीहर साॻे इलाइक़े में आयो हो, संदसि सुञाणप थी। जवाबदार वाके खे फुर्जो रंग ॾियण जी बि कोशिश कई। जवाबदार मक़तूल औरत जे मुड़ुस जो भेणजियो आहे। केस में दहशतगर्दी जो कलम लॻाइण जो फ़ैसिलो कयो आहे सूबाई गुरू वज़ीर पारां। जवाबदार जी गिरफ़्तारी ते पुलिस खे शाबाश।

0: कराची में रोलू कुतन के डारण के वाक्य में डीहों डी वाद नव महीनों दौरान मुख्तलिफ अस्पताल में 45,000 का वधिक केसेस रिपोर्ट अंग अखरन मूजिब इंडस अस्पताल में जनवरी का हेल ताई 14,000 का वधिक मरीज आया 23 जणन जूं हयातियूं ज़ाया थियूं आहिनि जिना ऐं पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में 10,000 खां वधीक केस रिपोर्ट थिया आहिनि 9 जणनि दम ॾिनो आहे डॉक्टर रूथ खे M5 सिविल अस्पताल कराची में जनवरी खां सेप्टेम्बर ताईं कुतनि जे डाड़नि जा 20,936 केस रिपोर्ट थिया आहिनि सिहत जे माहिरनि जो चवणु आहे त कुते जे डाड़ण खां पोइ मुतासिर शख़्स खे बिना देर अस्पताल पहुचाइण ऐं रेब्स खां बचाइण लाइ वैक्सीन कराइण ताईं अहम आहे।
1: दम थियूं परेशानियूं फोनू पैसा बासनि पिया त पैसा वठो पैसा पुटनि छोकिरी मारींदासीं तव्हांखे मारींदासीं पर वॾो कमु पिया था कनि पर मरी वेंदसि मूंखे इंसाफ़ खपे मूंखे इंसाफ़ ॾियारियो इन जॻहि ते न त 5-10 मिंटनि में पंहिंजे बचनि सिधी कई
2: पेट्रोल नाहे बाहि ॾेई मारे पुलिस छा कंदी असांखे धमकाइनि पिया असांखे पैसा पिया बाचीन असांखे धमकियूं पिया ॾियनि साईं।
0: सकरन में निंगरीअ सां ॾाढाई कंदड़ जवाबदार गिरफ़्तारीअ बाद छॾे ॾियण ख़िलाफ़ वारसनि जो गुज़िरियल ॾींहं खां थाणे आॾो एहतियात जारी निंगरीअ जे अमण जो चवण आहे त पुलिस जवाबदार खे गिरफ़्तार करण बाद छॾे ॾिनो आहे जवाबदार बासर हुजण सबब खां मोश रहण लाइ धमकाए रहिया आहिनि इंसाफ़ न मिलियो त पाण खे बाहि ॾेई छॾींदासीं। सखर भरिसां हथियारबंदनि जी फायरिंग में नारी क़तल ॻोठ नेण जातल हथियारबंदनि फायरिंग करे 17 वरनि जी सादिया मर खे क़तल कयो।

थुल वेझो वनवा में वेठल नारी मुबैना तौर अगवा एनसी दाखिल हक भाऊ कॉलोनी वासी वनवा में वेठल यतीम नारी मरियम चनो मुबैना तौर अगवा थी वही है। नारी के भाऊ जाकिर चनो जो चवण है जवाबदार मोहम्मद बुड़ो पैंजे साथिन से गड घर भातिन के जर्गमाल बनाए भेण के अगवा किया है। वाकई की एनसी दाखिल करने बावजूद पुलिस कुछ भी ना इंसाफ कर वे। पुलिस जो चवण है नारी के मुबैना अगवा की एनसी दाखिल कराई वही है। जांच क्यों पा एयरपोर्ट में एफबीआर मेडिकल सेंटर से छापो रिकॉर्ड तेवल में वरत वो है। एफबीआर सफर के कमिश्नर सैयद ताहिर डॉक्टर अयूब शेख के सेंटर से छापो है। मेडिकल सेंटर से छापे दौरान एफबीआर की टीम लैपटॉप ए बो रिकॉर्ड तेवल में वरत छो है। पानी ला एहतजाज बणजी वो है। एहतजाज कदड़ चौवंजा गोठान मथा केस दाखिल। यूसी पलेजाणी में मुख्तलिफ गोठन के रहवासियों को ब डी अग पानी कोर्ट खिलाफ एहतजाज किया हो। धारो पुलिस 15 औरतन समेत 54 गोठानन मां केस दाखिल कर छो है। गोठानन पारा दाखिल केस खत्म करण जो मुतालबो कयो वियो है। ओस्ता मोहम्मद में गढ़ी खेरो वासी डॉक्टर जो घर मां गोलियों लगल लाश हथायो है। पुलिस जांच लाए डॉक्टर की घरवारी के पैंजी तहवील में वठी पुछागाछा शुरू कर छी है। पुलिस जो चवण है डॉक्टर जो मौत कतल है या आपघात जांच बाद खबर पवंदी। चक वेझो चार डी अग अगवा थियल बिन औरतन की बाजियाबी लाए वारसन जो एहतजाज। गोड्रिप टामरी वासी नादिया उर्फ नादिया ए कलसूम टामरी के वारसन एहतजाज किया। संदस चवण है केस दाखिल थियण बावजूद जवाबदार वट कैद बिन्हीं औरतन के बाजियाब ना करायो वो। मामले जो नोटिस वी बिन्हीं औरतन के बाजियाब करायो वे। मातली में 18 खां 20 कलाक लोड शेडिंग बिजली बंदिश खिलाफ शहरन जो

0: अचा जी मुजाहिरो ऐं धरणो। मोहम्मद चौक खां अचा जी रैली कढी धरणो हयो वियो। वापदा अमले ख़िलाफ़ नारेबाज़ी कई वई आहे त जड॒हिं खां नओ SDO लोड शेडिंग शुरू थी वई आहे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में ॾे ज़बरदस्त हवा।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: खुशखबरी हाणे अवां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुबतला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऐं हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ऐं इलाज होम्योपैथिक तरीक़े सां कंदा आहिनि। अलहमदुलिल्लाह मरीज़ सेहतयाब थी अवां बि

सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, एमसीबी बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर उधर।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिस्ट।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: पाणी में आबादगारन लाए कमेटी भी कायम सिंध काबीना आबादगारन लाए कणक ते सब्सिडी पैकेज की मंजूरी दई छी कणक फ्राहम कदड़ हारियन लाए सब्सिडी 1000 मां वधाए 2000 रुपया फी मण कई वई वरी वजीर की सदारत हेठ काबीना के इजलास में 25 एकड़न ताई जमीन रखंदड़ हारियन की नई रजिस्ट्रेशन खोलने जो फैसलो सूबे में मिल्कियतन के डिजिटलाइज करण एक्सपोर्ट्स पॉलिसी की मंजूरी काबीना पारा एडवांस कलेक्शन टैक्स बीहर उगाड़ जो भी फैसलो सिंध हुकूमत कणक खरीदारी में नाकामी जो इतराफ कर वरतो कणक वाले मामले ते पंजाब मथा ज्यादती जो भी इल्जाम सिंध काबीना के इजलास बाद ब्रीफिंग दीदे खुराक वाले वजीर मखदूम महबूब चवान असां कणक की खरीदारी पंजाब टिन्ही सूबन सां ज्यादती कर रो है सिंध की कणक पंजाब वही पंजाब सिंध लाए वरी पेंचो बार्डर बंद रखो असा 2500 रूपयन की सपोर्ट प्राइस वाले निजाम मां निकली चुका हूं हाँ असा पेंजो सपोर्ट प्रोग्राम आणीदी मोहम्मद बख्श मेहर सिंध में कणक की पोख घटी पी वे इन भेरे भी असा के दुखियन के मुंह दियण पो अढ़ाई लख आबादगार रजिस्टर्ड कन्दी आबादगार मजबूत बनाईदी जाम खान छोरो 2025 में जैसे गोदाम में कणक मौजूद न हुए हा तो सिंध में अटे जो वो बोहरान पैदा थे हा

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: फार्मेसीज लेबोरेटरीज क्लिनिक्स अस्पताल तंदूर ऐं पेट्रोल पंप्स पाबंदी खां आजाद टेक अवे ऐं होम डिलीवरी सर्विसेज खे बि बंदिश खां छूट टिन महीननि लाइ परडे॒ही सरकारी दौरनि ऐं सफ़र ते मुकमल पाबंदी लागू ज़रूरत पवण ते वज़ीर सलाहकार ऐं सरकारी आफ़िसर इकोनॉमी क्लास में सफ़र कंदा सरकारी आजियाणनि ते बि पाबंदी हुकूमत जे ख़र्च ते को प्रोग्राम न थींदो 50% सरकारी गाॾियूं ग्राउंड थींदियूं सरकारी गाॾियुनि लाइ तेल जी फ़राहमी बि घटिताई फ्यूल रिलीफ पैकेज ते हुकूमत ऐं पेट्रोलियम डीलर्स विच में ॻाल्हियूं कामयाब इस्लामाबाद में गॾजाणी दौरान ॿिन्ही धुरियुनि विच में मामला तय थी विया डीलर्स खे स्टेट बैंक ज़रिए 48 कलाकनि अंदर अकाउंट्स में रक़म मुंतकिल करण ते तफ़ाक़ पेट्रोलियम वारे वज़ीर पारां आईंदा स्टेक होल्डर सां मुशावरत जो अमल वधीक बहितर बणण जी ख़ातिरी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जो चवण आहे त हुकूमत अदायगियुनि जे तरीक़ेकार जो नोटिफिकेशन जल्द जारी कंदी फ्यूल रिलीफ पैकेज ते अमल शुरू कयो वियो आहे सिंध में 25 एकड़नि जी एराज़ी ताईं कणक पोखींदड़ सब्सिडी पैकेज लाइ अहल करार ख़ुराक खाते खे कणकारियुनि खे वाधू सब्सिडी मिलंदी ज़रात वारे वज़ीर जी अॻवाणी में आबादकारनि लाइ कमेटी बि क़ाइम सिंध काबीना आबादकारनि लाइ कणक ते सब्सिडी पैकेज जी मंज़ूरी ॾेई छॾी कणक फराहम कंदड़ हारियुनि लाइ सब्सिडी 1000 मां वधाए 2000 रुपया फी मण कई वई वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि काबीना जे इजलास 25 एकड़नि ताईं ज़मीन रखंदड़ आर्यन जी नई रजिस्ट्रेशन खोलण जो फैसलो सूबे में मिल्कियतनि खे डिजिटलाइज करण ऐं स्पोर्ट्स पॉलिसी जी मंज़ूरी काबीना पारां एडवांस कलेक्शन टैक्स वीहर उगाड़ण जो बि फैसलो सिंध हुकूमत कणक ख़रीदारी में नाकामी जो इतराफ़ करे वरितो कणक वारे मामले ते पंजाब मथां ज़्यादती जो बि इल्ज़ाम सिंध काबीना जे इजलास में ब्रीफिंग बाद ॾींदे ख़ुराक वारे वज़ीर मख़्तूम महबूब ज़मान चयो आहे त असां कणक जी ख़रीदारी में नाकाम थिया आहियूं पंजाब टिन्ही सूबनि सां ज़्यादती करे रहियो आहे सिंध जी कणक पंजाब वई ऐं पंजाब सिंध लाइ वरी पंहिंजो ऑर्डर बंदि रखियो असां 3500 रुपियनि जे सपोर्ट प्राइस वारे निज़ाम मां निकिरी चुका आहियूं हाणे असां पंहिंजो सपोर्ट प्रोग्राम आणींदासीं मोहम्मद बख़्श पैर चयो त सिंध में कणक जी पोख घटि थींदी पई वञे हिन भेरे बि असांखे ॾुखियनि खे मुंहुं ॾियणो पियो वधीक 2.5 लख आबादकारनि खे रजिस्टर कंदासीं ऐं आबादकारनि खे मज़बूत बणाईंदासीं जाम ख़ान छोरो चयो त 2025 में जेकॾहिं गोदामनि में कणक मौजूदु न हुजे हा त सिंध में अटे जो वॾो बोहरान पैदा थिए हा फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर सां ईरान जे परडे॒ही वज़ीर अब्बास राक्षी जो टेलीफोनिक राब्तो घटि जी सूरतहाल इलाक़ई अखबराई ऐं गॾियल दिलचस्पी वारनि मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल ईरानी ख़बर एजेंसी मूजिबि अब्बास राक्षी जो फील्ड मार्शल सां फोन ते राब्तो चीन जे दौरे दौरान थियो अब्बास राक्षी जो बीजिंग जे दौरे दौरान तुर्क हमन सब सां बि फोन ते राब्तो अब्बास राक्षी चयो आहे त बीजिंग में चीनी अखबारनि सां कामयाब मुशावरत थी सदर शी जिनपिंग जो अमन बाबति बयान अहम हैसियत रखे थो
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6
5: खुशखबरी हाणे अवां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुबतला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्यो

होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह। मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन, अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतियाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, एमसीबी बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306244770।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके तो इन्हीं करे जदहें भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था इनन जे ख्वाबन के उडाम देन था पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो बुधंदा रहो
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज
3: जीए एफएम नेटवर्क
4: सिंध की आवाज

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।

दुकान मार्केट से शॉपिंग मॉल से रात 9 बजे बंद थींदा। शादी हॉल से ब्यू कमर्शियल सर्कल में रात 10 बजे ताई हूंदियूं। होटल रेस्टोरेंट्स कैफेज रात 11 बजे बंद कया वेंदा। हुकूमत पेट्रोलियम शयुनि जे वधंदड़ अघनि खे नज़र में रखंदे 3 महीननि लाइ किफ़ायत शहरी मुहिम जो नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। शादी तकरीबन में रुगो हिकु डिश पेश करण जो फ़ैसिलो। फार्मेसीज़, लेबोरेटरीज़, क्लिनिक्स, अस्पताल, तंदूर ऐं पेट्रोल पंप्स पाबंदी खां आजा। टेक अवे ऐं होम डिलीवरी सर्विसिस खे बि बंदिश खां छूट। 3 महीननि लाइ परडे॒ही सरकारी दौरनि ऐं सफ़र ते मुकमल पाबंदी लागू। ज़रूरत पवण ते वज़ीर, सलाहकार ऐं सरकारी आफ़िसर इकोनॉमी क्लास में सफ़र कंदा। सरकारी आजियाणनि ते बि पाबंदी। हुकूमत जे ख़र्च ते को प्रोग्राम न थींदो। 50% सरकारी गाॾियूं ग्राउंड थींदियूं। सरकारी गाॾियुनि लाइ तेल जी फ़राहमी में बि घटिताई। फ्यूल रिलीफ पैकेज ते हुकूमत ऐं पेट्रोलियम डीलर्स विच में ॻाल्हियूं कामयाब। इस्लामाबाद में घटाणी दौरान ॿिन्ही धुरियुनि विच में मामला तय थी विया। डीलर्स खे स्टेट बैंक ज़रिए 48 कलाकनि अंदरि अकाउंट्स में रक़म मुंतक़िल करण ते इतफ़ाक़। पेट्रोलियम वारे वज़ीर पारां आईंदा स्टेक होल्डर्स सां मुशावरत जो अमल वधीक बहितर बणाइण जी ख़ातिरी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जो चवण आहे त हुकूमत अदायगियुनि जे तरीक़ेकार जो नोटिफिकेशन जल्द जारी कंदी। फ्यूल रिलीफ पैकेज ते अमल शुरू कयो वियो आहे। सिंध में 25 एकड़नि जी एराज़ी ताईं कणक पोखींदड़ आबादगार सब्सिडी पैकेज लाइ अहल करार। खुराक खाते खे कणक फ्राहम कंदड़ हारियुनि खे वाधू सब्सिडी मिलंदी। ज़रात वारे वज़ीर जी अॻवाणी में आबादगारनि लाइ कमेटी बि क़ाइम। सिंध काबीना आबादगारनि लाइ कणक ते सब्सिडी पैकेज जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। कणक फ्राहम कंदड़ हारियुनि लाइ सब्सिडी 1000 मां वधाए 2000 रूपिया फ़ी मण कई वई। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि काबीना जे इजलास में 25 एकड़नि ताईं ज़मीन रखंदड़ हारियुनि जी नई रजिस्ट्रेशन खोलण जो फ़ैसिलो। सूबे में मिल्कियतनि खे डिजिटलाइज़ करण ऐं स्पोर्ट्स पॉलिसी जी मंज़ूरी। काबीना पारां एडवांस कलेक्शन टैक्स ॿीहर उघाइण जो बि फ़ैसिलो। सिंध हुकूमत कणक ख़रीदारी में नाकामी जो इतराफ़ करे वरितो। कणक वारे मामले ते पंजाब मथां जीआरपीअ जो बि इल्ज़ाम। सिंध काबीना जे इजलास बाद ब्रीफिंग ॾींदे खुराक वारे वज़ीर मखदूम महबूब ज़मान चयो त असां कणक जी ख़रीदारी में नाकाम थिया आहियूं। पंजाब टिन्ही सूबनि सां ज़्यादती करे रहियो आहे। सिंध जी कणक पंजाब वई ऐं पंजाब सिंध लाइ वरी पंहिंजो बार्डर बंदि रखियो। असां 2500 रूपियनि जी सपोर्ट प्राइस वारे निज़ाम मां निकिरी चुका आहियूं। हाणे असां पंहिंजो सपोर्ट प्रोग्राम आणींदासीं। मोहम्मद बख्श मेहर चयो त सिंध में कणक जी पोख घटि थींदी पई वञे। हिन भेरे बि असांखे ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾियणो पियो। वधीक 2.5 लख आबादगारनि खे रजिस्टर्ड कंदासीं ऐं आबादगारनि खे मज़बूत बणाईंदासीं। जाम ख़ान शोरो चयो त 2025 में जेकॾहिं गोदामनि में कणक मौजूद न हुजे हा त मुल्क में अटे जो वॾो बुहरान पैदा थिए हा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां ईरान जे परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराकी जो टेलीफोनिक राब्तो। ख़ते जी सूरतहाल, इलाक़ाई अगभराई ऐं गडि॒यल दिलचस्पी वारनि मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल। ईरानी ख़बरु एजेंसी मूजिबि अब्बास इराकी जो फील्ड मार्शल सां फोन ते राब्तो चीन जे दौरे दौरान थियो। अब्बास इराकी जो बीजिंग जे दौरे दौरान तुर्क हमनसब सां बि फोन ते राब्तो। अब्बास इराकी चयो आहे त बीजिंग में चीनी अॻवाननि सां कामयाब मुशावरत थी। सदर शी जिनपिंग जो अमन बाबति बयान अहम हैसियत रखे थो। पाकिस्तान मक्का मुआहिदे जो पाबंद आहे ऐं सऊदी अरब सां कुलो कुले में मिलाए बीठल आहे। परडे॒ही तर्जुमान पारां सऊदी अरब में हुसी हमलनि जी मुसम्मत। हमला नाकाम वञण ते सऊदी जी हथियारबंद फ़ौज जी साराह। परडे॒ही तर्जुमान चयो आहे त पाकिस्तान हुसी हमलनि खां पोइ पैदा थींदड़ सूरतहाल खे ॾिसी रहियो आहे। बाबुल मंतिब जी सूरतहाल ते बि घटती आहे। परडे॒ही तर्जुमान ओमान जी साहिली पट्टी ते हिकु जहाज़ मथां हमले दौरान हिकु

पाकिस्तानी जे गुम थियण जी तस्दीक बि करे छॾी। जहाज ते तनक़ीद थी रही आहे। इहो जहाज मुंहिंजो ज़ाती न पर वज़ीर आला पंजाब जो आहे। चइनी वॾनि वज़ीरनि वटि जहाज आहिनि। तनक़ीद रुगो मूं वटां थिए पई। धीअ जी ग्रेजुएशन तकरीब में वञण ते बि तनक़ीद थी। सभिनी खे ॿुधाइण चाहियां थी त जहाज ते जेको पोणा 3 करोड़ रुपया ख़र्च आयो उहो पंहिंजे खीसे मां भरियो। मरियम नवाज़ जो मुल्तान में तकरीब जो ख़िताब। मरियम नवाज़ जो चवण आहे त केपी मां कुझु माण्हू पंजाब ते हमिलो करण आया। पंजाब जी अवाम हिननि खे रद्द कयो त पाण मुरादो अख़वा जो ड्रामो रचायो वियो।

डिव्हिजन जे सदर निसार कोड़े चयो आहे त सिंध असेंबली केतिरा ई भेरा ठहराउ पास करे चुकी आहे त सिंध खे नओं सूबो न खपे, सूबा ठाहिणा आहिनि त पंजाब ऐं केपी में ठाहियो। हिकु वफ़ाकी वज़ीर सूबे जे मामले ते हथियार खणण जो चई रहियो आहे। इहो अमल खाना जंगी बराबरि आहे। अहिड़ी ॻाल्हियुनि जो वज़ीर आज़म नोटिस छो नथो वठे? निसार कोड़े जो लाड़काणे ॿार खे ख़िताब। निसार कोड़ो चयो त हिकु वफ़ाकी वज़ीर सूबनि जे मामले ते फ़ौज खे मुलविस कयो, पर डीआईजी एसपीआर वाज़े कयो आहे त फ़ौज अणधुरी ऐं सियासत खां परे आहे। पाक फ़ौज मुल्क खे आलमी सतह ते इज़त ॾियारी। सदर आसिफ अली ज़रदारी पंहिंजा अख़्तियार पार्लियामेंट खे मुंतकिल उन खे बाख़्तियार करे छॾियो आहे। कराची जे सुजाणी टाउन में औरत ऐं सदसि टिनि ॿारनि जो कातिल संदन वेझो अज़ीज निकितो। पुलिस खेसि गिरफ़्तार करे वरितो। डीआईजी ओलह इरफान बलोच प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त गिरफ़्तार जवाबदार मोहम्मद हुमायूं नारी मेविस सां ज़्यादती जी कोशिश कई, मुज़ामत करण ते खेसि क़तल करे छॾियो। 18 महीननि जी ॿारी रुनी त खेसि बि भित सां टकरूं हणी क़तल कयो। ॿ ॿार ट्यूशन तां मोटिया त उन्हनि खे बि क़तल करण बाद जवाबदार घर खे साफ़ कयो। सरियो बि धोतो जंहिं बाद फरार थियो। चौकीदार जे घर वारी जवाबदार हुमायूं खे मेविस जे घर वेंदे ॾिठो हो। जवाबदार बीहर साॻे इलाइक़े में आयो त संदसि सुञाणप थी। जवाबदार वाकिए खे पुरजो रंग ॾियण जी कोशिश बि कई। जवाबदार मक़तूल औरत जी मुड़ुस जो भेणियो आहे। केस में दहशतगर्दी जो कलम लॻाइण जो फ़ैसिलो कयो आहे। सूबाई घरू वज़ीर पारां जवाबदार जी गिरफ़्तारी ते पुलिस खे शाबाश।

0: कराची में रोलू कुत्तन के रहण वाले वाकियन में डीहों डी वार नव महीन दौरान मुख्तलिफ अस्पताल में 45,000 का केसेस रिपोर्ट अंगकरण मूजिब इंडस अस्पताल में जनवरी का हेल तीन 14,000 का मरीज इलाज लाया आया तेबी सबब 23 जन जो हयातू जया थी जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में 10,000 का केस रिपोर्ट थे नव जन दम दिनों डॉक्टर रुथ केम पाओ सिविल अस्पताल कराची में जनवरी का सेप्टेम्बर तीन कुत्तन के दहण जहा 20,936 केस रिपोर्ट थे सेहत के माहिरन जो चवण है कुत्ते के रहण का मुतासिर शख्स के बिना देर अस्पताल पहुंचण ए रेबीज का बचाव लाए वैक्सीन करण इंतहाई अहम है। सांगड़ में म्यूनसिपल इंतजामिया की ना हिली 70 वर्ष की मासूम न्याणी खुलियल गटर में किरी पौत ईदगाह के सामू निगरी वरियम पास हिली खुलियल गटर में किरी पई इलाके वासी निगरी जो लाश कढ़ी अस्पताल पहुंचाया शहरी मूजिब निगरी वालदेन से गड खरीदारी लाए आई हुई जिते वो खुलियल गटर नाले में किरी पई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: खुशखबरी हाने अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत ना आहे। जे करे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 बजे का शाम 5 बजे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306244770।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो।
1: आप सुन रहे थे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज। बदलना रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधरना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: जिस तरह है कलंदर लाल,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम, 5 डे ब्यूटी प्लान, एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता नी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, 1.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

नवे वगे बंद थींदा। शादी हॉल ऐं ॿियूं कमर्शियल सरगर्मियूं राति ॾह वगे ताईं। होटल रेस्टोरेंट्स ऐं कैफेज राति यारहें वगे बंद कया वेंदा। हुकूमत पेट्रोलियम शयुनि जे वधंदड़ अघनि खे नज़र में रखंदे 3 महीननि लाइ किफ़ायत शहरी मुहिम जो नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। शादी तक़रीबन में रुगो हिकु डिश पेश करण जो फ़ैसिलो। फार्मेसीज, लेबोरेटरीज़, क्लिनिक्स, इस्पताल, तंदूर ऐं पेट्रोल पंप्स पाबंदी खां आजा। टेक अवे ऐं होम डिलीवरी सर्विसिस खे बि बंदिश खां छूट। 3 महीननि लाइ परडे॒ही सरकारी दौरनि ऐं सफ़र ते मुकमल पाबंद पवण ते वज़ीर, सलाहकार ऐं सरकारी आफ़िसर इकोनॉमी क्लास में सफ़र कंदा। सरकारी आजियाणनि ते बि पाबंदी। हुकूमत जे ख़र्च ते को प्रोग्राम न थींदो। 50% सरकारी गाॾियूं ग्राउंड थींदियूं। सरकारी गाॾियुनि लाइ तेल जी फ़राहमी में बि घटिताई।

फ्यूल रिलीफ पैकेज से हुकूमत ऐं पेट्रोलियम डीलर्स विच में ॻाल्हियूं कामयाब। इस्लामाबाद में गॾजाणी दौरान ॿिन्ही धुरियुनि विच में मामला तय थी विया। डीलर्स खे स्टेट बैंक ज़रिए 48 कलाकनि अंदर अकाउंट्स में रक़म मुंतक़िल करण ते इतफ़ाक़। पेट्रोलियम वारे वज़ीर पारां आईंदा स्टेक होल्डर्स सां मुशावरत जो अमल वधीक बहितर बणाइण जी ख़ातिरी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जो चवणु आहे त हुकूमत अदायगियुनि जे तरीक़ेकार जो नोटिफिकेशन जल्द जारी कंदी। फ्यूल रिलीफ पैकेज ते अमल शुरू कयो वियो आहे। सिंध में 25 एकड़नि जी एराज़ी ताईं कणक पोखींदड़ आबादकार सब्सिडी पैकेज लाइ अहल करार। खुराक खाते खे कणक फराहम कंदड़ हारियुनि खे वाधू सब्सिडी मिलंदी। ज़राअत वारे वज़ीर जी अॻुवाणी में आबादकारनि लाइ कमेटी बि क़ाइम। सिंध काबीना आबादकारनि लाइ कणक ते सब्सिडी पैकेज जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। कणक फराहम कंदड़ हारियुनि लाइ सब्सिडी 1000 मां वधाए 2000 रूपिया फी मण कई वई। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि काबीना जे इजलास में 25 रखंदड़ हारियुनि जी नई रजिस्ट्रेशन खोलण जो फ़ैसिलो। सूबे में मिल्कियतनि खे सिंध हुकूमत करे वरितो। कणक वारे मामले ते पंजाब मथां ज़्यादतीअ जो बि इल्ज़ाम। सिंध काबीना जे इजलास बाद ब्रीफिंग ॾींदे खुराक वारे वज़ीर मख़दूम महबूब ज़मान चयो त असां कणक जी ख़रीदारी में नाकाम थिया आहियूं। पंजाब ॿिन्ही सूबनि सां ज़्यादती करे रहियो आहे। सिंध जी कणक पंजाब वई ऐं पंजाब सिंध लाइ वरी पंहिंजो बार्डर बंदि रखियो। असां 2500 रूपियनि जी सपोर्ट मां निकिरी चुका आहियूं। हाणे असां पंहिंजो सपोर्ट प्रोग्राम आणींदासीं। मोहम्मद बख्श मेहर चयो त सिंध में कणक जी पोख घटि थींदी पई वञे। हिन भेरे बि असांखे ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾियणो पियो। वधीक 28 लख आबादकारनि खे रजिस्टर में कणक मौजूद न हुजे हा त मुल्क में अटे जो वॾो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां ईरान जे परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराकी जो टेलीफोनिक राब्तो। हिते जी सूरतहाल इलाक़ई अख़बार गडि॒यल दिलचस्पी वारनि मामलनि ते ईरानी ख़बरू एजेंसी मूजिबि अब्बास इराकी जो फील्ड मार्शल सां फोन ते राब्तो चीन जे दौरे दौरान थियो। अब्बास इराकी जो बीजिंग जे दौरे दौरान तुर्क हमनसब राब्तो। अब्बास इराकी चयो आहे त बीजिंग में चीनी अख़बारनि सां कामयाब मुशावरत थी। सदर शी जिनपिंग जो अहम हैसियत रखे थो। पाकिस्तान मक्का मुआदे जो पाबंद आहे ऐं सऊदी अरब सां कुलो कुल्हे में मिलाए बीठल आहे। परडे॒ही तर्जुमान पारां सऊदी अरब में हुसी हमलनि जी मुज़म्मत। हमला नाकाम वञण ते सऊदी जी हथियारबंद फ़ौज जी सारा। परडे॒ही तर्जुमान चयो आहे त पाकिस्तान हुसी हमलनि खां पोइ पैदा थींदड़ सूरतहाल खे ॾिसी रहियो आहे। बाबुल मंदिब जी सूरतहाल ते बि घटती आहे। परडे॒ही तर्जुमान ओमान जी साहिली पट्टी ते हिकु जहाज़ मथां हमले दौरान हिकु पाकिस्तानी जे गुम थियण जी तस्दीक बि करे छॾी। जहाज ते तनक़ीद थी रही आहे। इहो जहाज मुंहिंजो ज़ाती न पर वज़ीर आला पंजाब जो आहे। चइनि वॾनि वज़ीरनि वटि जहाज आहिनि। तनक़ीद रुगो मूं वटां थिए पई। धीअ जी ग्रेजुएशन तकरीब में वञण ते बि तनक़ीद थी। सभिनी खे ॿुधाइण चाहियां थी त जहाज ते जेको 4.25 करोड़ रुपया ख़र्च आयो इहो पंहिंजे खीसे मां भरियो। मरियम नवाज़ जो मुल्तान में तकरीब खे ख़िताब। मरियम नवाज़ जो चवण आहे त केपी मां कुझ माण्हू पंजाब ते हमिलो करण आया। पंजाब जी अवाम हिननि खे रद्द कयो त पाण मुरादो अफ़वाह जो ड्रामो रचायो वियो।

0: ठहराव पास करे चुकी आहे त सिंध खे नओं सूबो न खपे सूबा ठाहिणा आहिनि त पंजाब ऐं केपी में ठाहियो हिते सूबे जे मामले ते हथियार खणण जो चई रहियो आहे इहो अमल खाना जंगी बराबर आहे अहिड़ी ॻाल्हियुनि जो वज़ीर आज़म नोटिस छो नथो वठे निसार कोड़े जो लाड़काणे पार खे ख़िताब निसार कोड़ो चयो त हिकु वफ़ाक़ी वज़ीर सूबनि जे मामले ते फ़ौज खे मुलविस कयो पर डीआईजी एसपीआर वाज़े कयो आहे त फ़ौज अणधुरी ऐं सियासत खां कुझु मुल्क खे आलमी सतह ते इज़त ॾियारी सदर आसिफ अली ज़रदारी पंहिंजा अख़्तियार पार्लियामेंट खे मुंतकिल उन खे बाख़्तियार करे छॾियो आहे
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो जीए एफएम 91.6
3: खुशखबरी हाणे अव्हां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुबतला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन अल्हम्दुलिल्लाह केतराई मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन अवां बे एक दफो आजमाए दिसो चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है क्लिनिक जो टाइम आई डी हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक बदीन स्टॉप रोड पुरानी सब्जी मंडी एमसीबी बैंक जे सामू नया पुल हैदराबाद वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई
3: एक कैटेगरी जो है जो कि हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है 3.5 लाख फर्स्ट कैटेगरी ये होगी कि हम और रजिस्ट्रेशन जो है और फार्मर्स को रजिस्टर करने के लिए अराउंड 2.5 लाख और फार्मर्स को हम रजिस्टर भी करेंगे
4: जो प्रॉपर्टीज है सिंध में उनको डिजिटलाइज कर रहे हैं और उनकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांसफर का जो है एक और बड़ा मेडिकल टावर बनाने जा रहे हैं 30 और 30 हजार इनकी मेडिकल टावर 13 मंजिला भी होगा 455 बिस्तर होंगे इसमें नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम की जो पीढ़ी है उनके जो मुद्दों को बनाने में कोशिश की गई SIOP के लिए 575 मिलियन से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की मतलब उनको एग्जिट किया गया है ताकि हमारे कलेक्शन है उसको दोबारा शुरू करने का फैसला किया है केवल उसका सजा है उसमें जो इनके प्राइवेट छोड़ी भी गई
5: 25 एकड़ की एराजी तीन आबादगार सब्सिडी पैकेज लाए अहल रवजे की अगवाणी में आबादगार लाए सिंध काबीना आबादगार लाए कणक से सब्सिडी पैकेज की मंजूरी दई छी कणक फराम कदड़ हारियन लाए सब्सिडी 1000 में वधाए वरे वजे की सदारत हेठ काबीना के इजलास में 25 एकड़ तीन जमीन रखंदड़ हारियन की नई रजिस्ट्रेशन खोलन जो फैसलो सूबे में मिल्कियतन के डिजिटलाइज करण स्पोर्ट्स पॉलिसी की मंजूरी काबीना पारा एडवांस कलेक्शन टैक्स बीहर उगाण जो भी फैसलो सिंध हुकूमत कणक खरीदारी में नाकामी जो एतराफ़ करे वरतो कणक वारे मामले ते पंजाब मथा ज्यादती जो भी इल्ज़ाम सिंध काबीना के इजलास बाद ब्रीफिंग दीदे खुराक वारे वजीर मख्तूम महबूब जमान चयो आहे त असा कणक की खरीदारी में नाकाम थे आहियूं पंजाब टिन्ही सूबन सां ज्यादती करे रहियो आहे सिंध जी कणक पंजाब वई ऐं पंजाब सिंध लाइ वरी पंहिंजो बार्डर बंदि रखियो असां 2500 रूपियनि जे सपोर्ट प्राइस वारे निज़ाम मां निकिरी चुका आहियूं हाणे असां पंहिंजो सपोर्ट प्रोग्राम आणींदासीं मोहम्मद बख्श मेहर चयो त सिंध में कणक जी पोख घटि थींदी पई वञे इन भेरे भी असांखे ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾियणो पियो वधीक 2.5 लख आबादगारनि खे रजिस्टर्ड कंदासीं ऐं आबादगारनि खे मज़बूत बणाईंदासीं जाम खान शोरो चयो त 2025 में जेकॾहिं गोदामनि में कणक मौजूद न हुजे हा त मुल्क में अटे जो वॾो बोहरान पैदा थिए हा अबास इराक़ी जो बीजिंग के दौरे दौरान तुर्क मनसब से भी फोन से राबो अबास इराक़ी है बीजिंग में चीनी अखबारों से कामयाब मुशावरत थी सदर शी जिनपिंग जो अमन बाबत बयान अहम हैसियत रखे तो पाकिस्तान मक्का मुआदे जो पाबंद है सऊदी अरब से खुलो खुले में मिलाए बीठल है वडे तर्जुमान पारा सऊदी अरब में हुसी हमलन की मजम्मत हमले से सऊदी फौज की सराब वडे तर्जुमान है तो पाकिस्तान हुसी हमलन का पैदा थन्दड़ सूरत हाल के ऐसी रो है बाबुल मंदब की सूरत हाल से भी घटती है वडे तर्जुमान ओमान की साहेली

0: તે નીચે ઘૂમતા જે તસ્દીક બી કરે છે. સૌદી અરબ તે હુસિયન જો એક વધીક ડ્રોન હમલો એક શહેરીએ જનો શિકાર બજણા જખમી થી પ્યા. સૌદી ઇતિહારન મુજબ હુસિયન પારા તાઇફ શહેર ના ઉમાડેલ ડ્રોન કે રસ્તે મેં રોકે તબાહ કર્યો હતો. ડ્રોન જો મલબો આબાદી તે કિરણ સબબ એક યમની શહેરી મારજી ગયો. એક પાકિસ્તાની શહેરી અને એક સૌદી ઔરત જખમી થી પ્યા.
1: મેરી બેટી કી ગ્રેજ્યુએશન કી તકરીબ થી ઉસમે મેં સરકારી જહાજ મેં ગઈ થી લેકિન 3.5 કરોડ રૂપિયા મેં અપની જેબ સે ઉઠાયા. અપની જેબ સે જો સરકારી જહાજ જાતિ મકાસદ કે લીએ ઇસ્તેમાલ કરતે ઓર ખજાને સે દેતે ઉસકે પૈસે ઉનકે બાત નહીં હોતી. બાત કિસ પે હોતી હૈ જો જહાજ કા કિરાયા ઉસકે પેટ્રોલ ડીઝલ કા કિરાયા ઉસકી પાર્કિંગ કા કિરાયા અપની જેબ સે દે રહી હૈ તનકીદ ઉસકે હોતી હૈ. તકલીફ મુજે ઇસ બાત ક્યુંકિ મેં જહાજ મેં ભી કામ કરતી હું, મેં બહાર કે મુલ્ક મેં કામ કરતી હું, મેં જહાં હોતી હું મેં કામ કરતી હું. કે પંજાબ ભર મેં પિછલે સાલ એક બદતરીન સેલાબ આયા તો ક્યાં મેં કશ્તીઓ મેં આપકે સાથ નહીં બેઠી. બડી તનકીદ હો રહી આજ મરિયમ નવાજ કે જહાજ પે. હાલાંકિ વો મરિયમ નવાજ કા જહાજ નહીં હૈ, વો વજીર આલા પંજાબ કા જહાજ હૈ. મરિયમ નવાજ ઉસ જહાજ કો ઉઠા કે રાયબંદ નહીં લેકર જાયેગી. યે ભી આપકો પતા હોગા કે ચારો ચીફ મિનિસ્ટર્સ કે પાસ યે જહાજ કી સહૂલત મોજૂદ. તનકીદ સિર્ફ મરિયમ નવાજ કે ઉપર થી, બાકી સૂજો મેં આપ દો.
0: जहाज से तनकीद थी रही है. यो जहाज मुझो जाती न पर वजीर अला पंजाब जो है. चैनी वडन वजीर वट जहाज आन तनकीद रुगो मुंह मता थे पई. धीए जी ग्रेजुएशन तकरीब में वजन से भी तनकीद थी. सभी के बुधायण चाहे थी तो जहाज से जो पौणा 3 करोड़ आयो यो मुल्तान में तकरीब के खिताब. मरियम नवाज चवण है तो केपी में कुछ मू पंजाब से हमलो कर आया. पंजाब की अवाम उन रद्द कर पान मुरादो अखवा जो जामो रचाया वो. करू वजीर मोहसिन नकवी एक भेरो बीहर मुल्क की तरक्की इस्तेकाम है अवामी मसलन के हल लाए नवन सूबन के अटल करार दई छो. करू वजीर मोहसिन नकवी सा चौधरी सालिक हुसैन ए डॉक्टर मोहम्मद अमजद मुलाकात कई. मुल्क की सियासी सूरत हाल नवन सूबन ए इंतजामी सुधारन के ख्याल की बेवट. मोहसिन नकवी है तो मुल्क की आबादी केतरा ही भेरा वधी वही पर इंतजामी ढांचो पुराणो है. इस्लामाबाद के भी सूबाई हैसियत दियण वक्त की अहम जरूरत है. चौधरी सालिक हुसैन जो चवण है तो करोड़न की आबादी वारन सूबन जो इंतजाम एक शख्स लाए हलायण मुमकिन ना ही रहो. सूबन जो अंग वधन सा आवाम के बराबर ध्यान ए पूरी इंतजामी सहूलत मिलन. पीपी सिंध के सदर निसार खोड़े चाहिए तो सिंध असेंबली केतरा ही पेरा ठहराव पास कर चुकी है तो सिंध के नौ सूबो न खपे. सूबा ठाणा तो पंजाब ए केपी में ठा. एक वफाकी वजीर सूबे के मामले से हथियार खण जो चई रो है. यो अमल घरू वेड़ बराबर है. अड़ी गाल वजी अजम नोटिस छो नटे. निसार खोड़े जो दाड़खाने पार के खिताब. निसार खोड़ो एक वफाकी वजीर सूबन के मामले से फौज के मुलविस पर डीआईजी आईएसपीआर वाजे है तो फौज अणधुरी ए सियासत का परे है. पाक फौज मुल्क के आलमी सतह से इज्जत दियारी. सदरा पैंजा अख्तियार पार्लियामेंट के मुंतकिल कया उनके बाख्तियार कर छो. तहरीक इंसाफ जो सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा गिरफ्तारी का आजाद. अपोजिशन इतिहाद के तर्जुमान जो चवण अकरम राजा जनाजे में शिरकत लाए कोटली सत्यान वो हो तो खेस गिरफ्तार कर. पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गुहर मुजम्मत कंदे है तो पुलिस सलमान अकरम राजा के बकिलाक पैं हिरासत में रखियो. गुजल कुछ डीहन दौरान 700 का मथे वर्करन के गिरफ्तार किया है. कौमी तोड़ी सूबन जा गिरफ्तारी वारंट जारी थी चुका है. कराची के सुजाणी टाउन में औरत ए संदस टिन बार कातिल संदस वेझो अजीज निकतो. पुलिस केस गिरफ्तार करे वरतो. डीआईजी ओले इरफान बलोच प्रेस कॉन्फ्रेंस करे चयो आए त गिरफ्तार जवाबदार मोहम्मद हुमायूं नारी मेविसा ज्यादती की कोशिश कई. मज़ामत कंटे केस कतल करे छो. अड़ा महीन की बाड़ी रूनी त केस भी वित से टकरियों हणी कतल कर. बार ट्यूशन त मोटिया तो उन्होंने

कतल करण बाद जवाबदार घर के साफ कयो सरियो भी धोतो जंहिं बाद फरार थियो चौकीदार जे घर वारी जवाबदार हुमायूं खे मेविश जे घर वेंदे डि॒ठो हो जवाबदार बीहर साॻे इलाइक़े में आयो त संदसि सुञाणप थी जवाबदार वाके खे कुर जो रंग ॾियण जी बि कोशिश कई जवाबदार मक़तूल औरत जे मुड़ुस जो भेणियो आहे केस में दहशतगर्दी जो कलम लॻाइण जो फ़ैसिलो कयो आहे सूबाई घर वज़ीर पारां जवाबदार जी गिरफ़्तारी ते पुलिस खे शाबाश।

0: भारत पारां ॿारनि जे सोशल मीडिया इस्तेमाल ते पाबंदी बाबति स्टेक होल्डर सां सलाह मशवरो। सोशल मीडिया जे इस्तेमाल लाइ उमिरि जी हद मुक़ररु करण जी तजवीज़। फैमिली वी लॉगिंग जे खे कंट्रोल करण जूं तजवीज़ूं सरियुनि जो थिए ऐं वफ़ाक़ी तोड़ी सूबाई पुलिस अमलदारनि सां मुशावरत कई वेंदी। घरू वज़ारत जे इजलास में आस्ट्रेलिया समेत मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जे सोशल मीडिया पॉलिसियुनि जो जाइज़ो वरितो वेंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। GAFM 91
3: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत ना आहे। जेकरे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड मरीजन जो चेकअप केतरा ही थी चुका आहिनि। इसे सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर खां खमीस ताईं सुबुह जो 10 वगे खां शाम 5 वगे ताईं। जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योप स्टॉप रोड सी मंडी के सामू नया पुल हैदराबाद। अधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।

चंड ते महफिल सजायो, चंड ते महफिल सजायो, दिल जी गाल करणी आ।

चंड ते महफिल सजायो, दिल जी गाल करणी आ, रही न दूर तड़पायो, दिल जी गाल करणी आ, रही दुनिया में नाहे सा मोहब्बत ऐं सचाई, लबनते मुर्का विखरल दिलन में आ बेआई, चाहत जा चंग वजायो, फिल सजायो। कराची का कश्मोर कींझर का कारूंझर ताई सुहणी सिंध वासिन के आबिद चौहान जो सिक भरियो सलाम कबूल पवे। प्रोग्राम दिल जी गाल से गदाऊं आया आबिद चौहान, आवां बुधी रहा हो जीए एफएम नेटवर्क।

प्रोग्राम दिल जी गाल ए GAFM नेटवर्क जे बुधुंदरन उबन रन दोस्तन खुशामदी जगमगाईंदा कती आकाश डे कहंदी जगमगाईंदा कताश डे कहंदी प्रींदास नदी ते बूर पियो किरंदो पखी सुरमा पियो बोली लै जे जी लाम परी तू मान हो जदहें सहदो नवा के सालर पलोट प्री तू मान हो

दोस्तों प्रोग्राम में शामिल कंदा से खूबसूरत आवाज में एक खूबसूरत ट्रैक सिंगार जा समूरा हथियार।

दोस्तो वक्त थियो आहे हिकड़ी नंढड़ी कमर्शियल ब्रेक जो। ब्रेक खां पोइ वापसि वरंदासीं। ॿुधंदा रहो GFM नेटवर्क।

0: It's 9:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Agarai Arch Beauty Cream, Aloe Vera, Sparkling, or De Shandar Miracle Glow Arch Beauty Cream.
2: एक इन कदमन के रोके भी सके तो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था पर पोलियो इन्हें कदमन के रोके भी सके तो इन्हीं करे भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हें जे ख्वाबन के उड़ाम देन था पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी
3: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी हाने पेंजी स्किन खेडियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
5: उसी
4: जंप नेटवर्क
5: सिंध की आवाज
6: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 उधंदा रहो।
1: शहबाज, जीए FM नेट,
2: सिंध की आवाज।

0: उदादा रहो। जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: दिस
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज उधर ना रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज
2: जीए एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

दुकान मार्केट्स ऐं शॉपिंग मॉल्स रात ते 9 वगे बंद थींदा। शादी हॉल्स ऐं ॿियूं कमर्शियल सरगर्मियूं रात ते 10 वगे ताईं हूंदियूं। होटल रेस्टोरेंट ऐं कैफेस रात 11 वगे बंद कया वेंदा। हुकूमत पेट्रोलियम शयुनि जे वधंदड़ अघनि खे नज़र में रखंदे 3 महीननि लाइ किफ़ायत शादी मुहिम जो नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। शादी तकरीबन में रुगो हिकु डिश पेश करण जो फ़ैसिलो। फार्मेसी, लेबोरेटरीज, क्लिनिक्स, अस्पताल, तंदूर ऐं पेट्रोल पंप्स पाबंदी खां आज़ाद। अवे ऐं होम डिलीवरी सर्विस खे बि बंदिश खां छूट। 10 महीननि लाइ पढ़े सरकारी दौरान ऐं सफ़र ते मुकमल पाबंदी लागू। ज़रूरत पवण ते वज़ीर, सलाहकार ऐं सरकारी आफ़िसर इकोनॉमी क्लास में सफ़र कंदा। सरकारी आजरणनि ते बि पाबंदी। हुकूमत जे ख़र्च ते को प्रोग्राम न थींदो। 50% सरकारी गाॾियूं ग्राउंड थींदियूं। सरकारी गाॾियुनि लाइ तेल जी फ़राहमी में बि घटिताई। वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत जी बचत स्कीम जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। इजलास दौरान माली साल 2026-27 जी बजट में नॉन ARE में 5% कटौती जो फ़ैसिलो। शहबाज शरीफ चयो आहे त घटि आमदनी ऐं मुआशी तौर कमज़ोर तबिके लाइ फ्यूल सब्सिडी शुरू थी वई आहे। मोटर साइकिल, रिक्शा ऐं 800 CC ताईं जी गाॾियुनि लाइ फ्यूल सब्सिडी ॾिनी। आलमी मंडी में तेल जे अघनि में वाध सबब समूरी दुनिया महांगाई खे मुंहुं ॾेई रही आहे। बचत स्कीम ते बिना फ़र्क़ जे अमल दरामद कयो वञे।

0: फ्यूल रिलीफ पैकेज से हुकूमत ऐं पेट्रोलियम डीलर्स विच में ॻाल्हियूं कामयाब। इस्लामाबाद में गॾिजाणी दौरान ॿिन्ही धुरियुनि विच में मामला तय थी विया। डीलर्स खे स्टेट बैंक ज़रिए 48 कलाकनि अंदर अकाउंट्स में रक़म मुंतक़िल करण ते तफ़ाक़। पेट्रोलियम वारे वज़ीर पारां आईंदा स्टेक होल्डर्स सां मुशावरत जो अमल वधीक बहितर बणण जी वातरी। पेट्रोलियम डीलर्स आहे त हुकूमत अदाइगो नोट जारी कंदी फ्यूल रिलीफ पैकेज ते अमल शुरू कयो वियो आहे।
1: नंबर जो एकड़ वो 4000 रखा है, ऊपर एकड़ के हिसाब से हम तीन कैटेगरी में करेंगे। एक कैटेगरी होगी जरूरी है, एक कैटेगरी रिकॉर्ड में मौजूद है, थर्ड कैटेगरी ये होगी कि हम और रजिस्ट्रेशन जो है और फार्मर्स को रजिस्टर करने के लिए अराउंड 2.5 लाख और फार्मर्स को और हम रजिस्टर भी करेंगे।
2: जो प्रॉपर्टीज है में उनको डिजिटलाइज कर रहे हैं और उनकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांसफर का जो है एक और बड़ा मेडिकल टावर बनाने जा रहे हैं। इनकी मेडिकल टावर 13 मंजिला ही होगा, 455 बिस्तर होंगे इसमें।
3: अपने स्टूडेंट्स का जो पीढ़ी है उनके जो मुद्दों को मिलाने में कोशिश की गई है।
2: एसआईओटी के लिए सबसे कलेक्शन है जो होती है और निश्चित होते हैं किया गया है। इसी की काजुमा ने आज एक छोड़ी दे दी।

दुकान शॉपिंग मॉल्स रात नव वगे बंद थींदा। शादी हॉल्स ऐं बियूं कमर्शियल सरगर्मियूं रात ॾह वगे ताईं हूंदियूं। होटल रेस्टोरेंट ऐं कैफेस रात यारहें वगे बंद कया वेंदा। हुकूमत पेट्रोलियम शयुनि जे वधंदड़ अघनि खे नज़र में रखंदे टिनि महीननि लाइ किफ़ातशारी मुहिम जो नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। शादी तकरीबन में रुगो हिकु डिश पेश करण जो फ़ैसिलो। फार्मेसी लेबोरेटरीज क्लिनिक्स इस्पताल तंदूर ऐं पेट्रोल पंप्स पाबंदी खां आज़ाद। अवे ऐं होम डिलीवरी सर्विस खे बि बंदिश खां छूट। टिनि महीननि लाइ कॾे सरकारी दौरनि ऐं सफ़र ते मुकमल पाबंदी लागू। ज़रूरत पवण ते वज़ीर सलाहकार ऐं सरकारी आफ़िसर इकोनॉमी क्लास में सफ़र कंदा। सरकारी आजरणनि ते बि पाबंदी। हुकूमत जे ख़र्च ते को प्रोग्राम न थींदो। 50% सरकारी गाॾियूं ग्राउंड थींदियूं। सरकारी गाॾियुनि लाइ तेल जी फ़राहमी में बि घटिताई। वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत जी बचत स्कीम जी मंज़ूरी ॾेई छॾे। इजलास दौरान माली साल 2026-27 जी बजट में नॉन एआरई में 50% कटौती जो फ़ैसिलो। शहबाज शरीफ चयो आहे त घटि आमदनी ऐं मुआशी तौर कमज़ोर तबिके लाइ फ्यूल सब्सिडी शुरू थी वई आहे। मोटर साइकिल, रिक्शा ऐं 800 CC ताईं जी गाॾियुनि लाइ फ्यूल सब्सिडी ॾिनी पई वञे। आलमी मंडी में तेल जे अघनि में वाधि सबब समूरी दुनिया महांगाई खे मुंहुं ॾेई रही आहे। बचत स्कीम ते बिना फ़र्क़ जे अमल दरामद कयो वञे।

फ्यूल रिलीफ पैकेज से हुकूमत ऐं पेट्रोलियम डीलर्स विच में ॻाल्हियूं कामयाब। इस्लामाबाद में गॾिजाणी दौरान ॿिन्ही धुरियुनि विच में मामला तय थी विया। डीलर्स खे स्टेट बैंक ज़रिए 48 कलाकनि अंदर अकाउंट्स में रक़म मुंतक़िल करण ते तफ़ाक़। पेट्रोलियम वारे वज़ीर पारां आईंदा स्टेक होल्डर्स सां मुशावरत जो अमल वधीक बहितर बणण जी वातरी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जो चवण आहे त हुकूमत अदायकियुनि जे तरीक़ेकार जो नोटिफिकेशन जल्द जारी कंदी फ्यूल रिलीफ पैकेज ते अमल शुरू कयो वियो आहे।

0: लाइन नंबर जो हमने रखा है पर एकड़ वो 4000 रखा है, वो पर एकड़ के हिसाब से हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक कैटेगरी होगी जिन्होंने हमें वीट की है, एक कैटेगरी वो है जो कि हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है 3.5 लाख, थर्ड कैटेगरी ये होगी कि हम और रजिस्ट्रेशन जो है और फॉर्मर्स को रजिस्टर करने के लिए अराउंड 2.5 लाख और फॉर्मर्स को हम रजिस्टर भी करेंगे।
1: जो प्रॉपर्टीज है सिंध में
0: उनको डिजिटलाइज कर रहे हैं और उनकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांसफर मुकम्मल हो गया। एक और बड़ा मेडिकल टावर बनाने जा रहे हैं, 30 और 30 हजार इनकी मेडिकल टावर, 13 मंजिला ही होगा, 455 बिस्तर होंगे इसमें।
2: नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम की जो पीढ़ी है उनके जो मुद्दों को मिलाने में कोशिश की गई है,
0: SIOT के लिए 575 मिलियन से ज्यादा तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की मदों को एग्जिट किया गया है, ताकि हमने पोस्ट कलेक्शन है उसको दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विसेज का शुभ है, उसमें जो भर्ती होती हैं और कमीशन होते हैं उनके पूरे काम को थोड़ा सा तब्दील किया गया है। स्पोर्ट्स पॉलिसी की काफी मैंने आगे छोड़ी भी दे दी।
3: सिंध में 25 एकड़ जी एराजी ताई कणक पोखीदड़ आबादगार सब्सिडी पैकेज लाइ अहल करा मुलाकात कई। मुल्क जी सियासी सूरत हाल नवन सूबन ए इंतजामी सुधारन के ख्यालन जी डे वट मोहसिन नकवी चयो आहे त मुल्क जी आबादी केतिराई भेरा वधी वई पर इंतजामी ढांचो करणो आहे। इस्लामाबाद खे बि सूबाई हैसियत ॾियण वक़्त जी 43 करोड़ जी आबादी वारनि सूबनि जो इंतज़ाम हिक अवाम खे वरतू मिलंदी। पीपी सिंध जे सदर निसार कोड़े चयो आहे त सिंध असेंबली केतिराई भेरा ठहराउ पास करे चुकी आहे त सिंध खे नओ सूबो न खपे, सूबा ठाहिणा आहिनि त पंजाब ऐं केपी में ठाहियो। हिकु वफ़ाकी वज़ीर सूबे जे मामले ते हथियार खणण जो चई रहियो आहे, इहो अमल घरू वेड़ बराबर आहे। अहिड़ी ॻाल्हियुनि जो वज़ीर आज़म नोटिस छो न